राइट राइट लेफ्ट राइट करना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट हाँ ठीक है, जो जैसी भाषा से समझे, क्योंकि हमारी यहाँ समझने की या समझाने की भाषा बहुत सा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी लिखते हैं, पशु को समझाना डंडे की भाषा है, अरे बात, मूर्खों को समझाना गाली की भाषा है, मूर्खों को गाली से समझाओ तो जल्दी समझ जाता है, और सज्जनों को हाथ जोड़ करके समझाओ, हाथ जोड़ते समझ जाएगा। तो सबकी भाषा अलग अलग है, साहित्यिकों को साहित्य की भाषा से समझाओ, दार्शनिकों को दर्शन की भाषा से समझाओ, अन्य नाटककारों को नाट्य भाषा से समझाओ, हर एक की समझने की समझाने की शैली अलग अलग होते हैं। और अंग्रेजी में राइट या लेफ्ट करो, लेफ्ट राइट आगे बढ़ो पीछे किसको, एवर टर्न करो। दक्षिणा नासिका पुटम, दक्षिण माने दाएं नासिका को क्या करना चाहिए, अंगुल्या अवस्तव्य, अवस्तव्य माने दबा करके, अंगुष्ठ आपका हाथ के जो अंगुलियां है इसका नाम क्या है किसका मालूम है, अरे अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम, ओम ओम कनिष्ठ भाई कनिष्ठ, ओम करतला करपृष्ठाभ्याम नमः। जो संध्या वंदना करेगा उसको याद होगा, उसको मालूम होगा, नहीं तो अंगुष्ठ हमने अंगुली है, कौन सा अंगुली का क्या नाम है ये भी हमको पता नहीं, पता है क्यों, अभ्यास नहीं है। ये अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा, ये करतल, ये करतल, ये करपृष्ठ, वो तो नमस्कार लक्ष्मी के करोगे ना मालूम है, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल ब्रह्मा प्रभात कर दर्शन, लक्ष्मी पहले ऐसे ही पहले उठते ही लक्ष्मी को नमस्कार करो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, बस और सबसे पहले लक्ष्मी का नमस्कार है, यही बात है ना नहीं, अर्थ का महत्व तो हर युग में होता है, ऐसा कोई युग नहीं है नहीं होता। तो दुर्योधन अगर लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करते हैं तो इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दुर्योधन महाभारत की लड़ाई तो लक्ष्मी के लिए ही हुआ। तथा प्राणायामादि का दक्षिणा नासिका पुटम, नासिका पुट समझे ना, नासिका के छिद्र को अंगुल्य अवस्तभ्य अंगुली के द्वारा दबा करके, बामे न वायुम पुरेत बाव नत्र बाय लेफ्ट, दाएं से दबा दिया, दाएं को तो दबा दिया तो ये खाली है ना, जो खाली है वो लेफ्ट है, उसके द्वारा वायु को भीतर ले जाओ, उसका नाम पूरक, पूर्ण करने के लिए पूरक हुआ, वायु पूरे कितना ले लें का यथाशक्ति, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना लो, है नहीं बात, यथाशक्ति तो अनंतरम उत्सिज्य एवं, इसके बाद उत्सृज्य निकाल करके एवं दक्षिण न पूर्व न समुत्सृजेत, इसका दक्षिण इसको दावा करके।
पर दक्षिणासिका के द्वारा उसको निकालना, किसका? यथाशक्ति अच्छा समुत्सीजित सभ्यम सभ्यम अभी धारे। इसके बाद सभ्य कहते किसको? बाएं को। देखो धारयित धारण करो माने बाहर तो आपने निकाल दिया, तो कब तक निकाल करके रखेंगे? यथाशक्ति ही आपने सामर्थ्य के अनुसार कुंभक करना हो भीतर धारण करो अनिवार्य, उसको कहते अभ्यंतर कुंभक। उसमें तो लिखता है इतना इतना अक्षर तक मतलब है, तुम प्राणायाम करते हो एक प्राणायाम, गायत्री जप करते हो एक गायत्री दो गायत्री तीन गायत्री, दो गायत्री से पूर्ण करो चार गायत्री तक रोको आठ गायत्री तक निकालो, और अथवा तुम एक से लेकर दस तक पूर्ण किया, दस से लेकर बीस तक धारण किया और बीस से लेकर चालीस तक निकालो पूरे सक करो। दो चार आठ बोलते हैं तो मतलब है दो चार आठ डबल डबल करना, दो का चार हुआ चार का आठ। अभ्यास से होगा ना, एक दिन में थोड़ी होगा, कह दिया था देखा देखी करे जो सीजिकाया बाड़े रोग, देखा देखी जो करोगे रोगी बन जाओगे, ऐसा नहीं करने का। उसने ऐसा किया, रामदेव ने पेट धक्का देकर भीतर ले लिया बाहर लिया, तुम भी ऐसा धक्का देना शुरू करोगे तुम्हारे हाथ ओड़ी फट जाएगा, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं करने का योग, कभी ऐसा नहीं करना। योग किसी योगी के पास रह करके सीखना पड़ता है, अरे बात बिना सीखे कभी योग का अभ्यास नहीं गया। पूरक ऐसा कुमार ही करो, साधारण है, इसके करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बाह्य कुंभक इसका नाम, तो उनको देख करके आप आठ सेकंड करो। पुनर्दक्षिणेन पुरयित्वा सभ्येन समुत्सीजेत, फिर क्या करना चाहिए? छूट गया क्या? पुनर्दक्षिणेन पुरयित्वा, फिर दक्षिणनासिका के द्वारा दाएं के द्वारा पूरण करके सभ्येन बाएं समुत्सीजेत, बाएं नाक से नासिका से रेसक करें।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Music. In this, you are about to listen Shiva Stotiram. The title is Shiva Ayukta Namavali, presented by Kanu Ramaswamy. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Bhagasa Panchavimshati Varshika

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Srikanta Bhashyam, presented by K.S. Mageshwaran Nambodiri.
1: कथम एतयो
2: एतयो परस्पर विलक्षणयो एकभावं आहुः श्रुतय इति
1: श्रुतयः श्रुति श्रुतयः अनयोः जीवब्रह्मणोः तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि इत्येवं विधाः श्रुतयः परस्परं अत्यन्तं विलक्षणयोः जीवब्रह्मणोः कथम् ऐक्यम् आहुः कथम् ऐक्यं वदन्ति इदं मोदल् मोदल् वरवेण्डिय सन्देहं तने किं ज्ञायते तत् ज्ञानमात्रेण संशय एव भवति अन्तज्ञानम् उनक संशयते तां कुडुकु इति संशयः किं न स्यात् अवश्यं स्यादेव
2: अपि च एवमपि सन्दिह्यते
1: इन्नो कूड पलविधमान सन्देहङ्गळ् वरु
2: अन्तं ब्रह्म मनो ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्म आदित्यो ब्रह्म नारायण परं ब्रह्म इत्यादयः अन्यम् अन्यम् अर्थं ब्रह्म इत्याहुः
1: ஸ்ருதிகள் உபாசனார்த்தாக ஸ்ருதய சில இடத்துல அன்னம் பிரம்மான் இருக்கு பிராணோ பிரம்மான் இருக்கு மனோ பிரம்மான் இருக்கு இது என்ன இது வெறும் இல்லையா பிரம்மம் பிரம்மம் சொல்றது என்னது சரி சந்தேகஸ்து பகுதி
2: தத்ர கிம்வா பிரம்ம இது பகுதா சந்திக்தம் பிரம்ம விசாரார்த்தம்
1: இது பகுதா சந்திக்தம் பிரம்ம
2: விசாரார்த்தம்
1: தத்ர படு
2: தத்ர கிம்வா பிரம்ம இது பகுதா சந்திக்தம் பிரம்ம
1: किं वा ब्रह्म इति स्वभावतः सन्देहो भवति अस्माकं तर्हि किं कर्तव्यं विचार एव कर्तव्यः तेषां तेषां वाक्यानां तात्पर्यं कुत्र इति मानान्तर अविरोधेन योजनीयं भवति तावत्पर्यन्तं सन्देहो न निवर्तते तत्र
2: तत्र श्रवणमननादिनिश्चितस्य भक्तिज्ञानविशेषाभिमुखस्य परमकारुणिकस्य महादेशिकस्य सर्वानुग्राहकस्य शिवस्य परब्रह्मणः प्रसादातिशयेन
1: अस्य अधिकारिणः
2: अधिकारिणः प्रध्वस्त
1: पाशपटल
2: प्रत्यक्षीभूत निखिल ज्ञानानन्द स्वरूप तत्समानानुगुणसार कैवल्य लक्ष्मीः प्रयोजनं च भवति
1: इत्यन्वय प्रयोजनं मोक्षः कैवल्य लक्ष्मीः कैवल्योत्कर्षः लक्ष्मी शब्दः उत्कर्षवाची निरतिशयं कैवल्यं केवलभावः केवलस्य भावः कैवल्यम् अन्यनिरपेक्षमाः स्थितिः तत् कैवल्यम् इत्युच्यते मोक्षः तद्भवति कथं भवति इत्युक्ते श्रवणमननादिनिश्चितस्य प्रथमतः तदुक्तं श्रवणमननाभ्यां निश्चितस्य ब्रह्मणः इत्यस्य विशेषणं ब्रह्मस्वरूपं श्रवणमननाभ्यां निश्चेतव्यं प्रथमतः श्रवणं नाम तात्पर्यविचारः मननं नाम मानान्तरविरोधपरिहारानुकूलव्यापारः இதெல்லாம் பண்ணி பிரம்மஸ்வரூபம்.

0: शिव शंभो हर हर महादेव
1: शिव शंभो हर हर महादेव
0: शिव शंभो हर हर महादेव
1: शिव
0: नारायण नारायण नारायण वासुदेव नारायण

सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित भक्त वृंद, प्रवचन का विषय भगवद अनुग्रह से आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित मणिषा पंचक। शब्द के अर्थ को बताऊंगा। तत्पूर्व आचार्य से आप लोग सब परिचित है, क्योंकि ऐसा एक संस्था में आप लोग बैठे हैं जो उसी परंपरा के दशनामी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के परंपरा में ही सम्मिलित है। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सभी संत इसी दशनामी परंपरा में हैं। इसलिए तो मैं मानता हूं कि आप लोग एक सौभाग्य है कि एक ऐसे शाश्वत नित्य परंपरा में राजपथ पर आप उतरे हैं, जिसमें भले ही हमें किसी कारणवश कहीं इधर उधर भटक भी जाए, परंतु चूंकि राजमार्ग में आप है, जीवन से कभी नहीं भटकेंगे। भगवत भक्तजन ऐसे ही एक दिव्य परंपरा के आचार्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए। उनके व्यक्तित्व को हम लोगों ने उस दिन भी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जयंती 8 मई को उद्यापन किए। व्यक्तित्व को जानने के लिए, समझने के लिए क्या चाहिए? उस व्यक्ति के जीवन के आचरण, डेली लाइफ में वो कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे आचरण कैसे करते हैं, कैसे विचरण करते हैं, और ये बर्ताव, आचरण, विचरण वो उनके जीवन के जो आंतरिक स्थिति है, निश्चय है, उसी का बाह्य अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं आपके सामने दिखा सकता हूं कि सद आचरण, सद विचार, परंतु वो अगर हमारे जीवन में प्रतिष्ठित ना हो, हृदय के विश्वास ना हो, उस बातों पर भरोसा ना हो, तो नारायण वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता है। आंतरिक जो सच्चाई है वो एक न एक दिन प्रकट हो ही जाता है। इसलिए जीवन को, महापुरुषों के जीवन अथवा किसी भी व्यक्तित्व के जीवन को जब हम अध्ययन करते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके जो इनर पार्ट्स है, जो आंतरिक विश्वास है, वो उनके प्रत्येक पद पर, प्रत्येक कर्म पर, प्रत्येक आचरण पर वो झलकते। ऐसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में अगर आप उनके दैवी पुरुष, अवतारी पुरुष मान करके ही विचार करते हैं, तब तो उनके दर्शन हमारे जीवन को किसी भी प्रकार के एनलाइटेड नहीं कर सकते। मैं अपना अवतार है, परंतु वो एक मानव उस जीवन के उत्कर्ष को, जीवन के साधना को करते हुए उस अति मानव स्तर पर पहुंचे। इस प्रकार से जब मैं अपने व्यक्तिगत चिंतन करता हूं, मुझे बहुत आनंद होता है और जीवन के एक आदर्श के रूप में मैं उनको स्वीकार कर पाता हूं। नहीं तो ईश्वर रूप से, अवतारी पुरुष के रूप से जब हम उसको स्वीकार करते हैं, तो उनके जीवन में अगर कोई दोष भी दिखाई पड़ता, वो अवतार है, लीला है, कर सकते हैं, ऐसे मन जो है
अनेक प्रकार के एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, परंतु वो समस्याएं, वो संघर्ष अपने जीवन में भी है। वो व्यक्ति किस प्रकार उस सामूहिक संघर्ष तत्कालिक परिवेश में कैसा समाधान करता हुआ अपने उस जीवन को दिव्य बनाया, वही हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, हम सब बोलते हैं भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, परंतु वो भी एक मानव से भगवान भगवत्ता को, मानवत्व से भगवत्व को प्राप्त किए, मानवता से। ये जो उनकी जो प्रोसेस है जीवन के, कैसे जीवन जिया, कैसे जीवन ग्रहण किए और जीवन में क्या प्राप्त किया, ये व्यक्तित्व का एक पार्ट। और ये स्टडी लाइफ एस्टैब्लिश किया जीवन में, उनके जीवन में एम्बिशन नहीं था, ऐसे भी नहीं मानते मैं एम्बिशन है, परंतु बाद में उस एम्बिशन को, उस जीवन के निश्चय को, बाकी जीवन में जो उनके स्थिरता है, शांति है, प्रशांति है, ईश्वर अस्तित्व में एक अटूट विश्वास है, वो उनके बाकी जीवन को देखने से लगता है। इसलिए भगवत भक्तजन, उनके माता और पिताजी के नाम से हम जानते हैं, शिव गुरु पिताजी थे और भद्रा मां। संतान नहीं था, औलाद कोई नहीं, कितने दुखी। एक दाम्पत्य जीवन की जो संघर्ष है, जो कष्ट है, वेदना है, और वही शिव गुरु और भद्रा के जीवन में हम देखते हैं। अनेक प्रकार की कोशिश हम करते हैं, परंतु कभी हमें यह पता नहीं लगता है कि हमारी कोशिश, हमारी चेष्टा, हमारी प्रचेष्टा से कुछ नहीं होने वाला। जब वो परमात्मा दिव्य सत्ता हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह व्यवहार कर सकते करते हैं, तब हम किसी कार्य को, किसी सृष्टि को, किसी निर्माण को कर सकते, अन्यथा हमारे कोई सामर्थ्य, कोई औकात नहीं है नारायण। हम कह सकते आचार्य यह अवतार है शिव के, साक्षात अवतार, उनके माता पिता को क्या कष्ट हो सकता है। नारायण उस जीवन को देखिए जो एक सृष्टि के लिए, एक संतान के लिए लालायित है, और उनके सारे प्रचेष्टा, शास्त्र ज्ञान, निष्ठा, आचरण, विश्वास आचार्य शंकर के पिताजी के अंदर नहीं थे। उनके जीवन को पढ़िए, फिर भी अगाध पांडित्य होते हुए भी सांसारिक जीवन में जो एक सृजन की आनंद सृष्टि की, उससे वो वंचित है। और इसीलिए जब हम शिव गुरु की जीवनी पढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक है, ईश्वर पर अटूट विश्वास है। दैनंदिन शंकर के अभिषेक आदि करते हैं।

आदेश दिया गया। शास्त्रीय विधि अनुसार मैं ब्रह्मचर्य गुरुगृह में रह करके पालन किए, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। परंतु गृहस्थ जीवन का एक उद्देश्य होता है, वंशज को रखना अपना कर्तव्य। तो इस भाव से वो भगवान से प्रार्थना करते थे। मां भद्रा के मन में वही वेदना, परंतु दोनों किन से प्रार्थना करते थे। एक दिन शिव गुरु भद्रा पत्नी को कहते हैं कि देखो, हम लोगों ने काफी प्रयत्न किया, ईश्वर से प्रार्थना किए, तुम्हें क्या लगता है। भद्रा निश्चूप होकर बैठी, उनके पास उस वेदना से कोमल हृदय पत्थर सा हो गया। कहीं ईश्वर अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है, कहीं उस विश्वास उस भरोसा को कोई और एक पार्ट हमेशा दबाना चाहते हैं। ना ना, विश्वास करके मत जियो, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो, नहीं हुआ, नहीं मिला, नहीं दिया, ये प्रत्येक के जीवन में है, नहीं दिया, आर्गू करते हैं, लांछन लगाते हैं, परंतु वो मुंह से कुछ भी बोल नहीं सकती। शिव गुरु उनके जीवन का जो निश्चय है वो आज भद्रा के पास प्रस्तुत करते हैं कि देखो, हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो वेदना है, जो चाह है, वो हम अपने आदिदेव महादेव को निवेदन किया। और फिर कहते हैं, देखो विश्वास है, उन्होंने सुना है, वो निश्चय है कि वो उनके कानों तक मेरी जो प्रार्थना है, व्याकुलता है, आकुति, वो पहुंचा। अब कुछ करना नहीं है, ना हमारे पास सामर्थ्य है। शिव गुरु की वो जो पंक्ति है नारायण, व्यक्ति को हिलाता है। आचार्य शंकर की जीवनी को हम जानते हैं, परंतु वो जो आचार्य शंकर के पिता, वो जो निश्चय करके बतलाते हैं, और ये जो एक फल उनको मिलता है कि सारा जीवन के पुरुषार्थ का एसेंस जो उनको वो निश्चय करके बैठ जाता है कि हमने प्रार्थना किया और विश्वास भरोसा के साथ उन तक पहुंचा। काफी कोशिश भी की, परंतु इस कोशिशों के बावजूद भी हमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, निवेदन प्रार्थना यही कर सकता हूं भद्रा। अब उनके अस्तित्व पर समर्पण कर दो। ये जो भाव है, समस्याएं घटनाएं अपने जीवन में नहीं आता है, ऐसा तो नहीं नारायण, और ऐसा भी नहीं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करते हैं। एक समय वो कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, एक समय उनको लगता है कि जीवन में कोई है जिसको हम ईश्वर माने चाहे ना माने, वो उनसे हम निवेदन एक बार करके देखे, अविश्वास से भर कर भी वो अस्तित्व के ऊपर एक बार प्रेयर कर बैठते हैं। घोर तर नास्तिक क्यों ना हो, उनके समस्या जब जीवन में उपस्थित होते हैं और जब देखते हैं कि वर्तमान समाज अथवा परिस्थिति पुरुषार्थ के द्वारा वो समस्या समाधान नहीं हो सकते, तब वो एक अविश्वास से भर कर भी प्रार्थना कर डालते उस अस्तित्व के प्रति। तो वो भी एक प्रार्थना है, जिनके हृदय में अविश्वास है, अस्तित्व के प्रति कोई सजगता नहीं है, परंतु एक वो भी प्रार्थना है जिनके हृदय में पूर्ण विश्वास है, निश्चय है, प्रेजेंस का अनुभूति है। और वो पूर्ण जिस दिन व्यक्तित्व के जीवन व्यक्तित्व से वो प्रार्थना कि वो
हम केवल प्रार्थना कर सकते।

0: चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो इस जीवन को, इस शरीर को औजार बना सकता है। मैं उनके इंस्ट्रूमेंट की तरह बज सकता हूं और कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते। पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय, गंभीर भरोसा उस दाम्पत्य जीवन में प्रतिष्ठित हो गया, शिव गुरु और भद्रा, और कालक्रम में भगवान शंकर स्वप्नादेश किए कि हे शिव गुरु, तुम्हारे घर जो है एक संतान जो सर्व गुण संपन्न जन्म लेने वाले हैं। बस जब हम पूरे घटनाओं को देखते हैं और वर्तमान जीवन को देखते हैं, नारायण एडुकेशन, सुरक्षा, निश्चिंतता, हम कितने भी कोशिश करें हमारे इस जीवन से हम कर नहीं सकते।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ Shaivam.org. The next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Amarneethi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhaktos, aaj hum sunenge aur ek sant ki kahani, jo ki Dakshin Bharat se hain. Inka naam hai Amarneethi Yar. Bhakt Amarneethi Yar ka jan Chol Pradesh mein Palayare नामक स्थान में एक वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य यानी जो कि लेन देन का कारोबार करते हैं। जहां पर इनका जन्म हुआ वह अत्यंत ही शास्य श्यामल खेतों से भरपूर उपज होती थी। अमरनीति स्वर्ण, हीरे, मोती, रेशम और सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करना, प्रभु के भक्तों की को भोजन कराना, उनके वस्त्र कौपानी कौपीन आदि की व्यवस्था करना उनकी दिनचर्या थी और यही उनके जीवन का लक्ष्य। तिरुनल्लूर में मंदिर उत्सव के समय एकत्रित होने वाले सभी भक्तों के ठहरने की व्यवस्था उन्होंने धर्मशाला की स्थापना की और स्वागत सत्कार का उचित प्रबंध किया। एक दिन प्रभु शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और अमरनीति यार के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय अमरनीति यार, जरा मेरी कौपीन की को सही जगह पर रख देना ताकि मैं कावेरी नदी में स्नान कर पुनः आकर अपना कौपीन तुमसे ले लूंगा। अमरनीति यार ने कहा कि हे शिवभक्त, हे योगी, मैं आपकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करूंगा। और उन्होंने कौपीन उनसे उस शिव योगी से लेकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। भक्त के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव भगवान जो कि उस समय योगी का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अमरनीति यार के यहाँ से उस कौपीन को अदृश्य कर दिया। वे स्नान करके लौटे और कहा, हे अमरनीति यार, मैं नहा के स्नान करके आ चुका हूँ, जरा मेरी कौपीन मुझे वापस लौटा दो। अमरनीति यार ने बहुत ढूंढा लेकिन उस स्थान पर कौपीन नहीं था जहां पर उन्होंने रखा था। उन्होंने निवेदन किया, महाराज, आपने जो वस्त्र रखने को दिया वह कहीं गुम हो गया है, उसके बदले में कृपया यह नया कौपीन धारण करें। उस शिव योगी ने आक्रोश में आकर क्रोध से बोला, आज आपकी कलई खुल गई, आपकी नियत का पता चल गया। हे अमरनीति यार, हमारे कौपीन की चोरी करने के इरादे से ही आपने साधु संतों के स्वागत सत्कार का धूम रचाया हुआ है। लज्जित भक्त अमरनीति यार ने उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र आदि स्वीकार करने का आग्रह किया। अंत में ब्रह्मचारी ने एक और पुराना फटासा कौपीन निकाला और कहा, इस फटे कौपीन के वजन के बराबर वस्त्र दे दो। अमरनीतिया ने हर्ष से पूर्व यह शर्त मान ली, जमीन पर डंडा गाड़कर तुला लगा दिया। एक पलटे में ब्रह्मचारी का कौपीन रख दिया और दूसरे पलटे में धीरे धीरे अनेक प्रकार के वस्त्र चढ़ाना शुरू किया। ढेरों कपड़ों की गांठ रखने पर भी पलटा हिला तक नहीं। संपूर्ण स्वर्ण चांदी जवाहरात आदि रख देने के पश्चात भी कौपीन वाला पलड़ा भारी ही था। अत्यंत निराश होकर अमरनी तैयार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यह कहकर पल्ले में बैठ गए। शरीर पर धारण की गई पवित्र विभूत और प्रभु के भक्तों की सेवा के प्रति हमारे प्रेम में यदि सत्य है तो यह दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। नमः शिवाय मंत्र का जाप कर त्रिनलोक के शिव का ध्यान कर जैसे ही अमरनी तैयार पल्ले में बैठे तो दोनों पलड़े एकदम बराबर हो गए। इसके साथ ही उस शिवयोगी ब्रह्मचारी शिव ने अपना योगी का रूप छोड़ अपना शिव पार्वती सहित आकाश में दर्शन देने लगे। अमरनी तैयार हर्ष से आनंद विभोर हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस तुला के पलड़े में अमरनी तैयार की सारी संपत्ति रखने पर भी कौपीन भारी ही था। भगवान भक्त की ये परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या वो इस सांसारिक स्वर्ण जवाहरात आदि को महत्व देते हैं या नहीं। जब अमरनी तैयार ने देखा कि उनकी सारी संपत्ति प्रभु के कपड़े के बराबर भी नहीं तुली तो उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि जीवों की प्रेम भक्ति ही भगवान की भगवत कृपा के समक्ष तुल सकती है। हृदय में प्रवाहित प्रेम भक्ति को अलग पलड़े पर रखना संभव ही नहीं। अतः वे प्रेम पूर्ण हृदय सहित पत्नी और बालक के साथ स्वयं तराजू में के पलड़े में बैठ गए। उसी क्षण दोनों पलड़े समान हो गए। यहाँ दास्य सेवा ध्यान देने योग्य है। सेवा की सार्थकता मैं और मेरी की भावना से मुक्त होने पर है। सेवा करने वाले के हृदय में थोड़ी मात्रा में ही सही कर्तृत्व भाव प्रेम भाव शेष रहता है। उसको निशेष करने के उद्देश्य से चेकिलर जो कि बहुत बड़े संत ज्ञानी थे उन्होंने कहा है, दास सेवा पर सबसे ज्यादा बल दो। हे भक्त, दास को तनिक भी स्वतंत्रता अनुभव करने का अधिकार नहीं होता, उसके सर्वस्व पर स्वामी का यानी कि प्रभु का पूर्ण अधिकार होता है। जिस कौपीन को अमरनी तैयार ने एक साधारण पुराना वस्त्र समझा वही उनके भक्तिभाव और सत्य साक्षात्कार का साधन बना। तिरुवाचकम की पंक्ति स्मरण करें, उसकी कृपा से उसके चरणों में नमन कर कृतार्थ हों। यही है अमरनी तैयार की कहानी। ओम नमः शिवाय।
1: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari. In Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: तो कहता है हमारे मनोरथ पूरा नहीं हुआ। पहले का संवादि भ्रम है, दूसरे का विसंवादि भ्रम है। ये देखो, ध्यान रख लेना। इसलिए मैंने आज पहले ही भ्रम के भेद की व्याख्या करना शुरू किया। यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति काचास्मनिमणि जले पेष्टे क्षीरम भवति मृगतृष्णा सुसलिलम। बुद्धि भवति है, बुद्धि का अन्वय करते जाना। तथा देव भ्रांत्या, हे देव हे शिव, इसी तरह कुछ जड़मति जड़धि भ्रांति से क्या करते हैं, भवत अन्यम भ्रांत्या भजति, आपको छोड़कर आपके सर्वव्यापकता को न जानने वाले आपकी सेवा करना छोड़कर अन्यों की सेवा करने चले रहते हैं। आपकी सर्वव्यापकता को न जानने वाले भ्रांति से अन्य अन्य की पूजा करने लग जाते हैं। हाँ, और हमारे महाराज जी ने कहा, अरे भाई राम की पूजा छोड़कर हनुमान की पूजा करने शुरू कर दिया, राम बड़े हैं कि हनुमान बड़े हैं? बोलो, राम मालिक हैं और उन राम मालिक की तो पूजा नहीं करते हैं, क्या करने लग गए? हनुमान जो राम के सेवक हैं उनकी पूजा करने लग गए। ले जी, क्यों महाराज? बोले हनुमान जी के बारे में सुना है, हाँ? बाल समय रज भक्त छिलिनो तब तीन हूं लोक भयो अधियारो, काई सुत्रास ताई सुत्रास भयो जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जय जग में कभी संकट हुए। जितना भी जो भी संकट आएगा भगवान माने हनुमान जी सारे संकट को दूर करने वाले हैं। संकट मोचन हनुमान की जय। देव जी, तो देखो हनुमान जी शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र है, शिव है। शिव के जो 11 स्वरूप है ना, रुद्र के जो 11 स्वरूप है उनमें से हनुमान जी 11वें अवतार है शिव के। हाँ, लेकिन क्या करते हैं, शिव की पूजा न करके हनुमान जी की पूजा चलेगा, क्योंकि हनुमान जी सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। किसी ने कह दिया हनुमान जी का 40 पाठ करते हुए भी कुछ ठीक नहीं हुआ, रोग बढ़ता गया, तो फिर क्या करे? बोले ओ तब फिर महामृत्युंजय का जप करो। और किसी ने महामृत्युंजय का जप किया, जप करने पर भी रोग ठीक नहीं, क्या करे? बोले हनुमान 40 का पाठ करो। ले एक शुरू किया उसको छोड़ा, फिर दूसरा किया, दूसरा किया उसको छोड़ा, फिर तीसरा किया उसको छोड़ दिया, फिर चौथा किया। ये क्या है बोलो? भ्रांति। सभी एक ही परमात्मा का स्वरूप है, हनुमान चाहे हो चाहे शिव हो, सब एक ही परमात्मा का स्वरूप होने के कारण वही सर्वरूप है। ये बुद्धि करके एक ही के आश्रय में न रहकर व्यक्ति भ्रांति से अनेक का आश्रय ले लेते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे भ्रांत व्यक्ति है संसार में, सारे प्रयोजन पूरा करने में समर्थ भगवान शिव होते हुए भी शिव के ही अनन्य शरण, आपके अनन्य शरण को न करके उसके भी जाएंगे, उसके भी जाएंगे। हाँ, इससे वो बढ़िया है, उससे वो बढ़िया है। संसार इतनी भ्रांत है कि भटक रहा है, परमात्मा के बारे में ही भ्रांत है, निश्चय नहीं कर पा रहा है ना, निश्चय नहीं कर पा रहा है, भ्रांत है। तो एक दृष्टांत देते हैं ना महात्मा। किसी एक गांव में एक किसान था, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ कि खेती करने के लिए उसको बहुत कठिन हो गया, बारिश नहीं हुई तो महात्मा आए, क्या हुआ बेटा? बोले कि महाराज क्या करें, देखिए बारिश नहीं हो रही है, पानी हो तो खेती करें, मेरे इतना जमीन है अब पानी नहीं है, मैं क्या करूं महाराज? महात्मा ने इस विचार किया, अरे बेटा जिस जमीन में तुम खेती करना चाहते हो उस जमीन के नीचे अपार जल है, जल का स्रोत है, तुम एक काम करो उसमें एक गहरा कुआं खोद लो तो पानी पानी है, फिर उसको लिफ्ट करके खेती कर लो, बारिश नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। महाराज कितनी गहराई खोदना पड़ेगा? महात्मा ने कहा कि लगभग 60 खोदना पड़ेगा। 60 यदि तुम खोदोगे तो पानी मिल जाएगा, फिर नीचे पानी नीचे ऊपर तांग खींच लो, उसके बाद खेती कर लो, बारिश न हो तो भी तुम खेती कर सकते हो। तो वो महात्मा तो चले गए, अब वो कुआं खोदने शुरू किए, खोदता गया 10 खोदा, महात्मा ने 60 खोदने के लिए कहा था, उसके नीचे खोदना थोड़ा उसको कठिनाई आई। महात्मा ने 60 फुट खोदने के लिए कहा था, 10 ये हो गया, बगल में फिर दूसरी जगह 10 खोदने शुरू कर दिया। कितना फुट हो गया? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, 20 हो गया ना। अब 20 तो हो गया, अब कितना रहा? 40 रहा ना। फिर 10 दूसरा खोद लिया उसने, हिसाब लगाया उसने, 30 हो गया, हाँ आधा हो गया। अब फिर क्योंकि गहराई में जाना उसको कठिन नहीं पड़ रहा था, और 60 फुट खोदो तो पानी आ जाएगा। महात्मा ने कहा 60 फुट खोदना है, तो 30 फुट खोद चुका वो। फिर उसने 10 फुट तीसरा खोद लिया, चौथा खोज लिया, 40 हो गया। ऐसे ही 6-10 फुट के 6 गड्ढे खोद ली, 60 फुट पूरा हुआ कि नहीं, है? हो गया कि नहीं? अब पानी उसके मिलेगा कि नहीं, है? पानी मिलेगा कि नहीं बोलो? नहीं मिलेगा। तो क्या वो गलती कर रहा है? है? वो गलती कर रहा है और हम सही कह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, है? 10 मिनट शिवजी की पूजा किया, महात्मा ने कहा 1 घंटा भगवान की सेवा करो। महात्मा ने क्या कहा? रोज 1 घंटा भगवान की सेवा करो। तो 10 मिनट शिवजी की सेवा की, और 10 मिनट कृष्ण की सेवा की, और 10 मिनट राम की सेवा की, 10 मिनट हनुमान की सेवा की, 10 मिनट देवी की सेवा की, 10 मिनट पता नहीं किस किस की सेवा करते हो, करते हैं कि नहीं? तो 1 घंटा पूरा होता है कि नहीं हमारा, बोलो। महात्मा ने कहा 1 घंटा पाठ, स्तोत्र पाठ किया करो शिव जी का, 1 घंटा पाठ किया करो स्तोत्र पाठ। तो उसमें से एक स्तोत्र 5 मिनट का देवी का कर लिया, और दूसरा 5 मिनट का गणेश का कर लिया, फिर 5 मिनट का किस किस का करते हो बोलो? जितने भी नाम प्रसिद्ध हैं सभी का करते हैं कि नहीं? तो परिणाम वो किसान सही है कि हम सही है बोलो? है? जो किसान की हालत है वही हमारी हालत है। एक ही भगवान में पूरी निष्ठा करके उसी का ही लगातार निरंतर अनन्य भाव से 1 घंटा एक ही देवक देवी का, परमात्मा का अनन्य भाव से पूजा करोगे, किसी और की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। ये बुद्धि तो है नहीं। स्तोत्रों में जो फलश्रुति सुन लेते हैं क्या है ये, अनेक स्तोत्र के पाठ करने की रुचि हमारी क्यों बढ़ती है, क्यों हो रही है ये स्थिति था मालूम है? स्तोत्रों में जो अंत में फलश्रुति सुनते हैं ना, बस वो फलश्रुति को सुनने के बाद हम निश्चय कर देते हैं, अरे इससे तो ये ठीक है, इससे भी ये ठीक है, इससे ये ठीक है, इससे वो ठीक है। ले जी, मैम ने स्तोत्र पाठ करते करते फिर अचानक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं बोलो? अब भाई मैम ने स्तोत्र का कह दिया पुष्प दंताचार्य जी ने, महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वम्। लेव जी इतना सुंदर फल स्तुति बता दिया, तो स्तोत्र पाठ कर दिया तो हो गया सब कुछ। तब फिर उसके बाद शिवतांडव पाठ करने शुरू करते हैं, है? क्यों करते हैं? शिवतांडव में भी फलश्रुति आ गया। फलश्रुति क्या है? पूजा वसान समये दश वक्त्र नित्रम या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम ददा प्रददाति शंभो। जो ये शिव तांडव कृता तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि लक्ष्मी हमेशा आगे खड़ी हो जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? ये फलश्रुति सुनता है तो फिर वो महेशान्ना परम तत्व वो छोड़ देता है, फिर जटाटवी गलत ज्वल करने लग जाता है, क्योंकि इसमें फलश्रुति क्या आ गया? लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभो। ले जी फिर ये कर लेता है। और फिर उसके बाद लिंगाष्टकम पाठ करता है, हैं? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। फिर वो जन्मज दुख, शरीर संबंधी सारे दुख को नाश करने वाले भगवान शिव की, शिवलिंग की पूजा का प्रणाम करते ही लिंगाष्टकम इदम पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते, ये फलश्रुति सुनता है तब तक तो क्या बढ़िया स्तोत्र है, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए महाराज। फिर उसको भी पढ़ता है तो सारे सारे है। तो दुनिया भर के इतना होता है सुबह स्तोत्र, और क्योंकि एक में विश्वास नहीं करता, जबकि सब एक ही है, जो भी पाठ करो एक ही है, एक ही परमात्मा है, ये बुद्धि तो होती नहीं, तब फिर अलग अलग स्तोत्र के पाठ करता है। शंकराचार्य जी बड़े सुंदर कह रहे हैं, यथा बुद्धि सुक्तौ रजतमिति काचास्मनि मणि जले पेस्ते क्षीरम भवति मृग तृष्णा सुसलिलम तथा देव भ्रांत्या भजति भवत अन्यम जड़मतो महादेवे सत्सम त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते। लेकिन वह ये मानता नहीं कि एक ही आपके आश्रय में रहकर महादेव ही सब कुछ हैं, ये निश्चय न कर पाने के कारण भ्रांति से भटकते रहते हैं, हजार देवताओं का कल्पना करते हैं और हजार देवताओं की उपासना करते हैं, हजार देवताओं की स्तुति करते हैं, हजार देवताओं की सेवा करते हैं, इस तरह भटक जाते हैं कि 60 फुट एक ही जगह खोदने के लिए महात्मा कहे थे, हैं? महात्मा ने क्या कहा था? महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो। महात्मा का आशय क्या था? एक ही जगह 60 फुट खोदो, ये कहने का अभिप्राय था। महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो, 60 फुट खोद लिया, पानी नहीं मिल रहा है। ले जी, तो प्रयोजन क्या हो रहा है? हम कर तो रहे फिर भी बहुत कुछ कर लेने पर भी कुछ फल सामने नहीं आता, करते हुए भी हम हमेशा असंतुष्ट का असंतुष्ट ही रहते हैं कि नहीं? करते हुए भी असंतुष्ट के असंतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं करने में हमारी त्रुटि है, भ्रांति है, कहीं ना कहीं हमारी भ्रांति है। भ्रांति क्या है? इसको भी करो, इसको भी करो, अरे भाई एक ही पर करो, निष्ठा की बात होती है, ये निष्ठा पर कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, गभीरे का सारे विसति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मति ही समर्पेकम चेतस सरसिज मुमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम जनई है न जानाति किम हो। आहा, हे महाराज, ये संसारी लोग सुनते तो है कि भगवान की पूजा करो तो सब प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, तो किस विधि से पूजा करें? तो किसी ने कहा, भगवान शिव कमल के फूल बड़े प्रसन्न हैं, कमल फूल से शिवजी की पूजा करोगे तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने भी जब भगवान शिव की पूजा करना शुरू किया तो श्रावण के सोमवार के दिन विष्णु ने संकल्प किया कि भगवान शिव को मैं 1000 कमल फूल से पूजा करूंगा। संकल्प कर ली और 1000 कमल का फूल टोकरी में रखा और संकल्प करके आचमन प्राणायाम आदि सब करके पूजा आरंभ की और शिव सहस्र नाम ले ली हाथ में। ओम शिवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि ओम भवाय नमः कमलपुष्पम समर्पयामि, ओम मृडाय नमः कमलपुष्पम समर्पयामि, ओम हराय नमः कमलपुष्पम समर्पयामि, करते करते करते पाठ करते गए कमल पुष्प चढ़ाते गए। भगवान शिव ने कहा इसकी मेरी कितनी निष्ठा है जरा देखें तो सही है? मेरी पूजा में इसकी निष्ठा कैसी है जरा देखें तो सही। भगवान शिव ने उसके टोकरी में से ये कमल का फूल, मैम ने स्तोत्र पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने, हटा दिया, गायब कर दी। अब भगवान शिव माने विष्णु 1000 नाम पढ़ते हुए चढ़ा रहे थे है? अंतिम नाम 999 नाम का उन्होंने पाठ कर ली और कमल का फूल चढ़ाया। एक नाम बचा है नामावली में और इधर टोकरी देखते हैं तो खाली, एक फूल मिला ही नहीं। और देखो अंग भंग होता है तो अंगी विकल हो जाता है। तुमने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 कमल पुष्प चढ़ाकर अर्चना करूं, यदि 1000 न चढ़ाकर 999 चढ़ा ली तो 1000 चढ़ाने का फल मिलेगा नहीं, 999 चढ़ाने का फल बेकार हो जाएगा। प्रतिज्ञा संकल्प तुमने जो की कितनी का, मैं केवल कमल पुष्प चढ़ाकर सेवा करूंगा, इतना कहते तो जितना मिला उतनी से तुमको काम चल जाता। लेकिन तुमने 1000 संख्या निश्चित करके प्रतिज्ञा कर ली तो 1000 ही चढ़ाना पड़ेगा, 999 जो फूल चढ़ाओगे उसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध, बेकार हो जाएगा, अंग भंग हो गया तो अंगी भंग। अब भगवान विष्णु को बड़ा मुश्किल पड़ गया, प्रतिज्ञा तो कर चुके हैं 1000 चढ़ाऊंगा, और क्या उनके प्रतिज्ञा भगवान शिव नहीं जानते थे कि 1000 चढ़ाऊंगा? कल जाकर यदि भगवान शिव ने कहा तूने तो 1000 चढ़ाऊंगा प्रतिज्ञा की थी, 999 क्यों चढ़ाया, ये क्यों नहीं चढ़ाया, इसलिए हम फल नहीं देंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, कह दिया तो हम क्या करेंगे? तो प्रतिज्ञा हानि किया तूने, तेरी प्रतिज्ञा हानि हुई। तो भगवान शिव बहुत विष्णु बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐसा भी नहीं है कि संकल्प किया जिस आसन में वो फिर उठे गए और कमल फिर दूसरा लेके आए तब फिर वो संकल्प टूट गया, अधूरा हो गया, आसन भंग हो गया, आसन भंग हो गया तो खत्म। हम लोग इस बात का ध्यान तो देते नहीं है, करते सब हुए लेकिन विधि से नहीं करते है? जब करने बैठते ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, ए रामो दूध आया कि नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय है? अब क्या देखो तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, 108 बार मैं जप करूंगा, 108 बार हुए, तुमने बीच में ये रामो कह दिया तो खंडित हो गया। अब यह एक रामो कहने के बाद फिर तुमने शुरू से शुरू करते माला, और एक रामो न के बिना पूरा करते तो एक माला पूरा हो जाता, फिर दोबारे फिर शुरू करते करते फिर बीच में आ गया। अरे बेटा उठा के नहीं रामो तो देखा तो नहीं, चाय बनाना था उसको, आज स्कूल जाना है, जरा उठा दे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्या हुआ भाई, प्रतिज्ञा हानि। तो सब कुछ करते हुए संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि विधि में त्रुटि है। इसी तरह त्रुटि हो जाता है तब रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो तुम कहते हो हमने सब किया फल नहीं आ रहा है, यही कह रहे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया पता है, उठ के जाता हूं तो पूजा खंडित हो जाता है, अब प्रतिज्ञा की 1000 कमल चढ़ाना है, एक फूल की कमी हो गई क्या करूं, उनको झट स्मृति आ गई, सभी भक्त लोग मुझे हमेशा क्या कहते हैं कमल नयनम, सब लोग मुझे बार बार कमल नयन कमल नयन कमल नयन कहते हैं, इसका मतलब मेरा नेत्र कमल है, नेत्र कमल है तो फिर भगवान को कमल की प्रसन्नता है, कमल चाहिए, दो है, एक से मैं देख लूंगा एक शिव जी को चढ़ाऊंगा। फाट उन्होंने वो अपने नेत्र निकाला और चढ़ा दी, बस किसने, वैष्णवो सुन लो, किसने, विष्णु ने है? तुम तो नाम भी लेने नहीं चाहते हो शिवा, टाका मारो है? कपड़ा सिवानू छे नहीं कहेंगे, कपड़ा टाका मारवानू छे। टाका क्यों मारना है, शिव क्यों नहीं सियोगे, क्योंकि शिव आ गया ना उसमें। अरे रे रे रे रे रे रे ले जी, ये कुछ दुराग्रही है, आप लोग नहीं है, हैं ऐसे भी हैं भाई। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सच्ची घटना है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। प्रेम कुटीर में आप लोग भी जानते हो, मैं प्रवचन कर रहा था, बहुत पहले की बात है, और प्रेम कुटीर के दयाराम मेवा वाला तो आप जानते हो ना, बहुत लोग जानते हो, दयाराम मेवा वाला बूढ़े काका थे, सब लोग काका कहते हैं, दयाराम काका मेवा वाले, और उनकी आदत भी आप लोग जानते हो, शिवोहम शिवोहम, जहां भी चलते थे, सड़क में भी चले तो जोर जोर से शिवोहम, और कहीं भी शिवोहम जोर जोर से करते हुए चलते थे। एक दिन की बात है, कुछ कृष्ण भक्त साधु, कृष्ण भक्त साधु, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए ना, कृष्ण भक्त साधु, वो मेरे पास आए थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे, मैं भी हूं भी, तो बैठे थे, हाथ में माला भी जप रहे थे और बात भी कर रहे थे हमसे, हैं? उनके हाथ में माला भी घूमती रहती है ना आज से, तो बात भी कर रहे थे। इतने में वो आ गए दयाराम मेवा वाले, शिवोहम करते हुए मेरे कमरे में घुस गए जोर जोर से। तो जहां उन्होंने जोर जोर से शिवोहम कहने लग गए, ये जो कृष्ण भक्त साधु उन भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण, जोर, सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्ची घटना। ओहो, उनका शिवोहम ताकि हरे कृष्ण से गायब हो जाए, दब जाए, वो सुनना ही नहीं चाहे। तब फिर दयाराम काका ने मुझे प्रणाम किया, उसके बाद फिर उन साधुओं को प्रणाम करने के लिए झुके तो उनको मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, हमका हमारा चरण मत छू। बोले क्यों महाराज, आप तो साधु है। बोले नहीं नहीं, आप तो शिव हो, हम तो जीव हैं, हम तो परमात्मा के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, आप तो शिव हो क्योंकि आपने शिवो हम कहा, अब शिव हमारे चरण छुए, ना ना ना, छूने नहीं दिया। अब ये क्या है बोलो, ये क्या है, पूर्वाग्रह है कि नहीं, दुराग्रह है कि नहीं, है? उनको कह देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं महाराज हम अपना चरण क्यों छुआएंगे, आप चरण मत छुओ, आप भजन करो, हम भी भजन करते हैं, चरण छुने की क्या जरूरत, दूर से हाथ जोड़ लो, कह देते तो खत्म हो जाता। वो उन्होंने व्यंग किया, व्यंग उक्ति उनकी, आप शिव है, साक्षात शिव है, तो हमारा चरण क्यों छुएंगे आप शिव, ले जी ठीक है, वो साक्षात शिव है तो तुम छू लो, है? वो साक्षात शिव है तो तुम उठ के छू लो, तुम क्यों नहीं छू रहे हो, कह तो दिया कि आप शिव है, इसका मतलब क्या है, क्या सही भावना से सही हृदय से ये बात अभिव्यक्ति हो रही है, दुराग्रह है। तो भगवान विष्णु ने तो आंख निकाली और चढ़ा दी, तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए, वाह तुम्हारी भक्ति, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो बोलो। बोले नहीं महाराज, आप इसी तरह प्रसन्न रहें, हमको इतनी और कुछ नहीं चाहिए। तब फिर वो आंख भगवान ने वापस कर दी, उनका आंख जैसा का वैसा हो गया, साथ में सुदर्शन चक्र दिए, विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शिव के दी हुई है, ध्यान रखना है। ये कैसे चक्रपाणी हो गए आज विष्णु, किसके कृपा से, शिव कृपा से, कैसे, उन्होंने अनन्य भाव से भक्ति की और अपना नेत्र ही उनको सर्वस्व मानकर नेत्र कमल चढ़ा दिया, उनको कोष नुकसान नहीं हुआ, यह निष्ठा की बात है। लेकिन कुछ लोग ये देखते हैं भगवान शिव को कमल प्रिय है, तो कमल से अर्चना करने के लिए गहरे से गहरे सरोवर में कमल के फूल लेने के लिए आपने जीवन की भी बाजी लगाकर उस सरोवर में घुसते हैं और कमल तोड़कर लाते हैं, तब आपकी पूजा करते हैं। एक ये गभीरे का सारे बिसती, और दूसरा बिजने घोर बिपिने। कुछ लोग भगवान शिव को जंगल के कुछ फूल ऐसे बहुत प्रिय है, जैसे पहले भगवान शिव को केतकी का फूल, केवड़ा का फूल अति प्रिय था, अति प्रिय। और वो केवड़ा घोर जंगल में होता है और कांटे कांटों के बीच में होता है केवड़ा। लेकिन जिस दिन से केवड़ा ने भगवान शिव से झूठ बोला, ब्रह्मा के पक्ष में लगकर भगवान शिव से झूठ बोला, तो भगवान शिव ने उसका तिरस्कार कर दिया। तब केवड़ा रोने लगा, महाराज आप हमेशा मुझसे प्रिय करते थे, अब आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। महाराज ऐसा मत करो, दया करो, कृपा करो। तो भगवान शिव ने कह दिया ठीक है, साल में एक दिन मैं तुमको स्वीकार करूंगा, और कोई व्यक्ति यदि उस दिन तुम्हारे फूल से, तुमसे यदि मेरी अर्चना करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होगा। केवड़ा तीज, उस दिन से उसका नाम ही अमर हो गया, केवड़ा तीज। और उस दिन भगवान शिव को केवड़ा अति प्रिय है। उसके लिए वो केवड़ा खोजने के लिए घोर जंगल में जीवन को बाजी, कहां बाघ भालू शेर चीता रहते हैं, वहां पर भी व्यक्ति जाता है और केवड़ा को फूल तोड़कर लाता है और भगवान शिव को चढ़ाता है। विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मति। एक कमल तो होता है सरोवर में खिलने वाला, एक कमल होता है हिमालय में होता है, जहां बर्फ है वहीं वो फूल खिलता है, उसका नाम है नील कमल। आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, विशेष करके भगवान शिव को केदारनाथ में, उससे भी ऊपर जहां बर्फ है वहां से नील कमल लाकर भगवान शिव को पूजा करते हैं। वहां के पुजारी आप लोगों को प्रसाद के रूप में नील कमल का फूल देते हैं, और वो शिव को नील कमल प्रसन्न है करके कठोर से कठोर, जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां बर्फ ही बर्फ है, ऐसे जगह भी व्यक्ति जाकर नील कमल को तोड़ के लाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये सब मूर्ख है, ले जी शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब मूर्ख है। नील कमल के लिए अपने जीवन की बाजी लगा रहा है, कमल के फूल के लिए गहरे से गहरे सरोवर में जा रहे हैं, केवड़ा के लिए घोर से घोर जंगल में जा रहे हैं, ये नहीं जानते भगवान को सबसे, इन सबसे भी ज्यादा प्रिय फूल उसका हृदय है, और अपना हृदय तो अर्पण करते नहीं है, और खाली कमल का फूल के लिए गहरे सरोवर में डूबने जाएंगे, नील कमल के लिए पहाड़ के चोटी में जाएंगे, केवड़ा फूल के लिए जंगल को घोर जंगल में भटकेंगे। लेकिन ये सब मूर्ख है। मैंने तो इतनी समझ लिया महाराज, न मैं नील कमल लाने वाला हूं, न सरोवर के कमल लाऊंगा, न केवड़ा ले आऊंगा। आपको इन सबसे भी ज्यादा प्रिय जो सबसे बढ़िया फूल तो क्या है, समर्पेकम चेतस सरसिज, ये तो चेतस सरसिज, हृदय कमल। हृदय रूपी कमल को कोई अर्पण नहीं करता। और मैं जानता हूं उमानाथ, ये संबोधन है, हे उमानाथ आपको सबसे ज्यादा प्रिय तो हृदय कमल है, और मैं उसी हृदय कमल को आपके चरण में समर्पण करता हूं, बाकी सरोवर में पहाड़ों में जाने की हिम्मत मेरी नहीं है। बस समर्पेकम चेतस सरसिज उमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम, बस आपने पास है, पैदाश से ही अपने पास है, न कहीं पहाड़ की चोटी में जाना, तुम जहां हो वहीं तुम्हारा हृदय है ही है, उस हृदय कमल को वहीं आराम से भगवान शिव के चरण में अर्पण कर दो, तो फिर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और वो करते नहीं, जड़मती इधर उधर भटकते रहते हैं भगवान को खुश करने के लिए। सुखे नावस्था तुम जन इह न जानाति किम हो। ओहो, आश्चर्य की बात है, जन न जानाति, इस बात को संसारी लोग अज्ञानी लोग नहीं जानते, इसीलिए हृदय कमल को तो भगवान के चरण में अर्पण नहीं करते और बार बार से इधर के भौतिक फूलों को खोजते भटकते रहते हैं। सबसे बढ़िया हृदय कमल अर्पण करो और सुखपूर्वक आनंद से रहो। मैं तो यही करूंगा भाई, न पहाड़ में जाऊंगा, न जंगल में जाऊंगा, न सरोवर में जाऊंगा, बस आराम से यही बैठे बैठे यही आपके लिए हृदय कमल अर्पण है बारस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
5: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
5: Om Namah Shivaya.

श्लोक के अंतिम चरण में पुष्पदंताचार्य जी श्लोक के तात्पर्य को बदला देते हैं। यही श्री महिमन का एक वैशिष्ट है कि रहमे श्लोक के अंतिम बताया था न कस्यापि उन्नते शिरस्त्वय अवनति। भगवान के चरणों में सिर का झुकाना सभी के लिए उन्नति का भोग और मोक्ष प्रद है। जैसा कि अभी आप लोग पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय अखंडा जी महाराज के प्रवचन से सुन रहे थे कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सीमित अहंकार है, अभिमान तो पतन का कारण है पर स्वाभिमान उत्थान का कारण है। जैसे किसी को स्वाभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रेमपुरी का सत्संगी हूँ, साधक हूँ, मोक्षु हूँ, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं ज्ञान वृद्ध हूँ, वयोवृद्ध हूँ, यदि ऐसा स्वाभिमान है तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल पड़ेगा। तो स्वाभिमान से हम अपने कर्तव्य की तरह से सावधान रहते हैं, प्रमाद नहीं होता है, और अभिमान से प्रमाद होता है। देखो दोनों में इतना ही अंतर है, अभिमान से प्रमाद, स्वाभिमान से आदमी सावधान रहता है। अभिमान है तो क्या सोचते, हमारी मर्जी कुछ भी करे, कौन बोलने वाला है, किसकी हिम्मत बोलने की, कुछ भी हम कर सकते। और स्वाभिमान है तो आप अपने आप अपने कर्तव्य कर्म में सावधान रहेंगे, दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी सो गए तो जल्दी उठ गए तो आपको पता है कि हमको 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। कोई ब्राह्मण है उसको ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान है तो जल्दी से उठ करके संध्या उपासना करेगा, भगवान सूर्य को अर्घ देगा, गायत्री महामंत्र का जाप करेगा, इसके बाद तुरंत जो है प्रेमपुरी दौड़ कर आएगा। और मान लो अभिमान है तो क्या सोचेगा, अपनी मर्जी चाहे 10 बजे उठो, 10 बजे उठना है, इसके बाद में 11 बजे कर सकता है, फोन कर देगा जरा ऑफिस संभालना, जरा देर आता। तो दोनों में इतना ही अंतर है। और हमेशा जो ईर्ष्या होती है वह दूसरे के गुण को कला को न सहने से, जैसे कि जो ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व या साधकत्व मोक्षुत्व के जो सत्कर्म है, गुण है, कला है, उस पर जो अमल नहीं कर सकता, नहीं चल सकता है, वह उससे ईर्ष्या करता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, ब्राह्मण से ईर्ष्या करेगा, देवता से ईर्ष्या करेगा, गुरु से ईर्ष्या करेगा, यहाँ तक कि माता पिता से भी लोग करते हैं, कहते ये सब अंध परंपरा, पुरानी परंपरा वाले हैं, ये लोग जो है ना गणेश युग के हैं, बस एक धर्रे पर बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं। भाई जब नींद आए तो सो जाओ, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, और जब नींद खुले चाहे 8 बज रहा हो चाहे 10 बज रहा हो तो उठ जाओ। ये जो है अभिमान का लक्षण है। तो 13वें श्लोक के अंतिम चरण में साफ साफ बता दिया पुष्पदंताचार्य जी ने कि भगवान के चरणों में सिर का झुकाना भोगप्रद और मोक्षप्रद है। 14वें श्लोक के अंतिम चरण में तात्पर्य बतलाया था कि भगवान का स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः। भगवान शंकर प्राणियों के भय को भंग नष्ट करने का स्वभाव है, शील है। ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको स्वरूप कहते हैं, और उसके अंदर सामर्थ्य है यतु वायुमानि भूतानि जातानि जीवन्ति, उसका सामर्थ्य है। और उसका स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः, आनंद स्वभाव है, सबको आनंदित करना,
प्राणियों के दुख को दूर करना। जिस अविद्या से हम लोग घबराते हैं उसी अविद्या को भगवान ने अपना अलंकार बना लिया, गले में धारण कर लिया हलाहल को। इसके बाद जब जीवात्माओं के अंदर कामना हुई, उस कामना को भंग करने के लिए ये 15वां श्लोक है। जिस कामना से आप परेशान होते हैं उसी काम की लीला 15वें श्लोक में बताया कि कामना से क्या फायदा है क्या नुकसान है दोनों का। इसको माल की भाषा मूल्यांकन भी कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुर नरे, चाहे वह देवता हो या असुर या नर, जिसके ऊपर कामदेव के काम के बाण का जो है प्रहार होता है वह वहां पर अपना काम करके ही छोड़ता है, स्वभाव है। काम शब्द का अर्थ है इदम करिष्यामि या इदम में स्यात्। संक्षेप में कहें तो इदम में स्यात् का अर्थ है काम, यह मुझे हो जाए और यह न हो, इसी का नाम कामना है। प्रत्येक आदमी जब से पैदा हुआ और जब तक जीवित रहता है तब तक यही इच्छा करता है कि भगवान कृपा करना ऐसा हो जाए, भगवान कृपा करना वैसा हो जाए। एक विद्यार्थी था, बड़ा अच्छा दक्ष था, परीक्षा में उसने जरा कुछ गलत टिक लगा दिया। टिक लगाने का आजकल होता है ना, परीक्षा में था कि भारत की राजधानी कहाँ है और जापान की राजधानी कहाँ। बेचारा जल्दबाजी में उसने लगा दिया भारत की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी दिल्ली लगा दिया। अब जब मंदिर में आया तो याद आया कि हमने जो है जरा वो जो टिक लगाया गलत लगाया। लगा भगवान से प्रार्थना करने, भगवान आप कृपा करके रातों रात भारत की राजधानी टोक्यो बना दो, जापान की दिल्ली। उसके पिता ने सोचा कि आ इतना देर हो गई, अभी तक हाथ जोड़ करके बैठा ही है, क्या बात है। जाके बाजू में सुनने लगा तो यही जोर से बोल रहा है भगवान कृपा करो राजधानी बदल दो, नहीं तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, साल भर की परिश्रम बेकार। पिता ने कहा कि बताओ इसके लिए भगवान यदि ऐसा करे तो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। यही हम लोगों की कामना होती है, बस भगवान से कहते हैं कि ऐसा हो जाए ऐसा न हो, इसी का नाम है कामना। यही है काम, इच्छा विशेष। यदि मान लो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ले तो दोनों देशों में बड़ा भारी महाभारत छिड़ जाएगा। परंतु भगवान को मालूम है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसी प्रार्थना कर रहा, भले ही विद्यार्थी नादान है पर भगवान नादान नहीं। तो जीवात्मा भगवान को भी अपनी इच्छा अनुसार घुमाना चाहता है क्योंकि यह अल्पज्ञ है। तो यह जब हमारे जीवन में कामना आती है तो कामना इदम में स्यात् को लेकर के जब आती है तो मनुष्य उसी के पूरा करने में लगा रहता है। ये कामना तो पूरी नहीं होती पर हम लोग पूरे हो जाते हैं। आज तक कभी भी किसी की भी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई है। शास्त्रकार कहते हैं साक्षात जिसके ब्रह्म लाडले हैं, भगवान राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात निर्शेष चैतन्य के ही अवतार आनंद के अवतार है, उस माँ बाप की भी कामना पूरी नहीं हुई। दशरथ जी जब प्राण त्यागे तो उनकी कामना थी हा राम मैं आपको सिंहासन पर बैठे नहीं देख सका। तो देखो वो ब्रह्म जिसका बाप है ऐसे दशरथ महाराज, उनकी भी कामना कहाँ परिपूर्ण हुई। ये कामना का स्वभाव है जो कभी न परिपूर्ण हो, उसी की नाम कामना है।
पर हम लोग अपने कामना को परिपूर्ण करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी देवताओं की कामना है कि तारकासुर का वध हो। तारकासुर की वध के लिए कामदेव को प्रेरित किया कि निष्काम भगवान शंकर के ऊपर तुम अपना काम बाण का प्रहार करो। पहले तो मना कर दिया, परंतु जब देवताओं ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो उनकी प्रशंसा में तारीफ जो है ना, एक मीठी जहर है। उनकी प्रशंसा में बेचारा बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया वैसे ही बेचारा भस्मभूत हो गया। भगवान के ज्ञान अग्नि से उसका नाश हो गया। इधर देवताओं की कामना अधूरी रह गई। देवताओं ने तो सोचा था कि जैसे कि अन्य देवताओं को, मनुष्यों को, असुरों को कि कामदेव अपने काम से व्यथित कर देता है, वैसे ही देवाधिदेव महादेव को भी यह जो है चलायमान कर देगा, परंतु विपरीत परिणाम

फिर भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया है, पार्वती से ब्याह करके और देवताओं के संकट को मिटाया है। यह तो पौराणिक कथानक है, परंतु हमारे जीवन में भी जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो उसको निवृत्त करने के लिए दुनिया वाले यही सलाह देते हैं। भगवान शंकराचार्य देवा शब्द का व्याख्यान कई जगह किए हैं, द्योतनात देवा इंद्रियाणि, ये हमारी इंद्रियां विषय को प्रकाशित करने से, आंख रूप को प्रकाशित करती है, कान शब्द को, ये इंद्रियां हमारी ये देवा हैं। इंद्रियां जब व्यथित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो ये इंद्रियां जो है फिर जो है उस कामना के अनुसार प्रवृत्त होती है। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि भाई देखो अब तुम ब्याह कर लो, बहुत तुमने पढ़ लिया, लिख लिया, साक्षर हो गए, पैसा कमा लिया, नौकरी भी लग गई, बिना ब्याह के जो है ना तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं होगा, तारकासुर का बध नहीं होगा। अब बेचारा ब्याह कर लिया, इसके बाद और नई समस्या जुड़ गई, बच्चे हो गए, इसके बाद और नई समस्या। समस्याओं का समाधान केवल भगवान के चरणों में है, क्योंकि जब भगवान के चरण का हम लोग आश्रय लेते हैं तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। स्मर स्मर्तव्यात्मा नहीं बसीषु पथ्य परिभव, इस श्लोक का सार बतला दिया, जिसकी इंद्रियां बस में है, मन बस में है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनका परिभव, परिभव बोलते तिरस्कार, अनादर। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को रामायण में लिखा है, साधु अवज्ञा करिफल ऐसे जरई नाथ और जरई नगर अनाथ कर जैसे, संत की अवज्ञा करने से नगर अनाथ के समान जो लंका था वह जलने लगा। इसी बात यहाँ लिखा कि महापुरुषों का जिनकी इंद्रियां मन वश में है, जो हमेशा भगवान के भजन में लगे हैं, ऐसे का जो परिभव तिरस्कार है, वो नहीं पथ्य किसी के भी कल्याण को करने वाला नहीं होता है, बड़ा ही अमंगलकारी होता है। पूज्य पूजा व्यतिकरणे मरण त्रासो दुर्भिक्षु जायते, पूज्य के पूजा का व्यतिकर मतलब तिरस्कार करने से, छोड़ने से, मरण या जो है भूकंप जैसी समस्या खड़ी होती है। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, उस घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार काशी के कुछ पंडित कश्मीर यात्रा के लिए चले, कश्मीर पहुंचने के बाद वहां का राजा बड़ा स्वागत किया। राजा ने पूछा कि आप हमारे यहाँ किस कामना से इच्छा से आए हैं। पंडितों ने कहा कि हम कश्मीर के तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने सारी व्यवस्था कर दिया, काशी के पंडित अच्छी प्रकार से कश्मीर के तीर्थाटन को कर लिए, पधारे। राजा ने पूछा कोई तकलीफ तो नहीं हुई। काशी के विद्वानों ने कहा कि यात्रा तो हमने सब पूरी कर ली, परंतु हमने सुना है कि आपके देश में बड़े भारी एक पंडित हैं जिनका नाम कैयट है, कैयट बहुत मशहूर है, व्याकरण दर्शन पर इनका बड़ा अच्छा व्याख्यान है, तो हम कैयट का दर्शन करना चाहते हैं। काशी ने कहा कि हमें तो पता नहीं कोई कैयट यहाँ पर है। काशी के पंडितों ने कहा कि हम लोग उनके ग्रंथ को भी पढ़े हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। राजा ने कहा कि आप ठहरिए, मैं पता लगा करके आपको बताऊंगा। पंडितों की व्यवस्था कर दिया, मंत्री को भेजा कि पता लगाओ कैयट कहाँ रहते हैं। कई दिन ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि एक नदी के किनारे अपना झोपड़ी बना करके अब कैयट पठन पाठन में लगे हुए हैं। राजा पंडितों की व्यवस्था कर दिया, पंडित कैयट के पास जाते हैं,

0: जाकर के उनसे अच्छी वार्तालाप होती है। वार्तालाप में सारे शंका का समाधान करते हैं। काशी के पंडित बहुत खुश हुए, एक तो हमारी यात्रा पूरी हुई, दूसरी शंकाओं का समाधान हो गया, जितनी शंकाएं थी। चलते समय उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जिस देश में इतना बड़ा भारी पंडित हो, विद्वान हो, उसके न रहने की ठीक से व्यवस्था है, न खाने की, न कोई मकान है, झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, जैसे तैसे कुल्थी के अनाज को बना के खाता है। उनके मन में संशय हुआ कि लगता है कि राजा यहाँ का विद्वत प्रिय नहीं है। राजा के पास काशी के पंडित आए, राजा ने पूछा कि आपने उनका दर्शन किया? तो पंडितों ने कहा दर्शन भी किया, शंका समाधान भी हुआ, परंतु राजन अब आपका यह राज्य बहुत दिन तक ठहर नहीं सकता है। राजा ने कहा ऐसी क्या कमी आपको दिखाई पड़ी? काशी के पंडितों ने कहा कि जिस राज्य में विद्वान का संत का तिरस्कार हो, वह राज्य लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके राज्य में इतने बड़े भारी पंडित हैं, आप उनका नाम भी नहीं जानते, उनकी व्यवस्था भी ठीक से नहीं, ये बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। राजा ने कहा कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, तत्काल मैं उनकी सारी व्यवस्था कर देता हूं। राजा अपने मंत्री को वहां भेजता है, मंत्री जाकर कैयट के पास निवेदन करते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप जो है बताइए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। कैयट ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, मैं अपरिग्रही ब्राह्मण हूं, मैं परिग्रह नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण को परिग्रह करना निषेध है, जरूरत से ज्यादा चीज ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मंत्री वापस आ गए, राजा ने सोचा कि मुझे खुद चलना चाहिए। राजा खुद जो है दूसरे दिन कैयट के पास जाते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं और राजा ने कहा कि आपको कोई अनुपत्ति हो तो आप मुझे बतलाइए। कैयट ने कहा मुझे तो कुछ भी अनुपत्ति नहीं, क्योंकि मैंने बड़ा सोच विचार करके ग्रंथों का व्याख्यान लिखा है, मुझे तो कोई अनुपत्ति है नहीं। हाँ तुझे कोई अनुपत्ति है तो तू बता, मैं समाधान करूंगा। राजा ने कहा कि मैं तो कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, अनुपत्ति का तात्पर्य है कि जो आपके पास चीज न हो, कमी हो, उसको आप बतलाइए। अनुपत्ति शब्द का दो अर्थ होता है, एक तो यह अर्थ है कि आपने किसी चीज को लिखा हो, समझा हो, पढ़ा हो, पर उसमें जो है कोई तर्क न मिले, युक्ति न मिले, तो उसको अनुपत्ति कहते हैं। कि हमने तो यह कह दिया कि भगवान सत्य चित आनंद स्वरूप है, ये संसार केवल व्यवहारिक है, आत्मा ही अपरिवर्तनीय है, परंतु इसमें कोई तर्क न हो तो कहते हैं कि इसकी अनुपत्ति है, उपपत्ति नहीं। तो अनुपत्ति का अर्थ होता है कि सोची समझी लिखी पड़ी बात के लिए तर्क का न मिलना, इसमें कोई तर्क ना हो। और दूसरा अनुपत्ति का अर्थ है कि अभाव, हमारे पास जो चीज होना चाहिए वो चीज ना हो, जैसे कि हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, हुआ ना हो, जरूरतमंद चीजों के अभाव को भी अनुपत्ति कहते हैं। तो यार राजा ने कहा कि हमारा भाव है कि आपके पास यदि कुछ न हो, जरूरत की चीजें, तो आप बताइए, हम उसकी पूरी कर देंगे। कैयट ने पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो अनाज कितना है। धर्म पत्नी ने कहा यदि घड़ा भी अनाज भरा हुआ है। कैयट ने कहा कि बस आपकी इच्छा है तो आप इसको भर दो, इससे अधिक नहीं चाहिए। राजा ने कहा महाराज आपने मांगा भी तो क्या मांगा, राजा से हो भी, इस घड़े को आप केवल भर दो, आपको चाहिए तो मैं मकान बना देता हूँ, आने जाने के लिए सुंदर जो है रथ रख देता हूँ, सुंदर कपड़े देता हूँ, चार पांच दास दासियां रख देता हूँ। पंडित जी ने कहा कि देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, विद्वान हूँ। यदि मैं अच्छे मकान में रहूंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, तो उसको संभालना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, हमारा समय उधर जाएगा, तो अपना अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इतना ही पर्याप्त है। राजा ने कहा कि काशी के पंडित आए थे और उन्होंने कहा कि आपका राज्य बहुत दिन नहीं ठहरेगा, क्योंकि आपके राज्य में कई जैसे विद्वान अब व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं, इसलिए मैं आपको व्यवस्थित करने के लिए आया हूँ। कैयट ने पत्नी को बुलाया, कहा कि देखो हमारे रहने से यदि इसके राज्य का नुकसान होता हो तो अपने को चलना चाहिए। चटाई उठाया, घड़ा लिया, चलने को उद्यत हुए। राजा हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने लगा कि हमारे कहने का भाव यह नहीं है कि आपके रहने से हमारे राज्य का नुकसान होगा, बल्कि भाव यह है कि जिस राज्य में विद्वान ब्राह्मण संत का निरादर हो वह राज्य अधिक दिन तक चल नहीं सकता है, इसलिए आप कुछ स्वीकार कर लीजिए। राजा की बात को मान करके उन्होंने कुछ उसके भेंट को स्वीकार कर लिया। तो देखिए, जब तक यह मुझे ब्राह्मणत्व का अभिमान है, स्वाभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, तब तो परिग्रह नहीं करेगा, और यदि ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान नहीं है तो चाहे जितना भी दे दो, इदम मिश्यात इदम मिश्यात, इसकी कोई पूरी नहीं होनी है, चाहे कितना भी उसको दे दिया जाए। और जीवन में ब्राह्मणत्व का साधुत्व का स्वाभिमान है, क्षत्रिय के पास वैश्य के पास ज्यादा धन हो तो नुकसान नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ काम करना होता है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, दूसरे का सहयोग करना है। परंतु जो साधु ब्राह्मण का मुख्य लक्ष्य है पठन पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, ये जो छह उनके एक कर्तव्य बदलाए हैं, पहला है पढ़ना पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना यज्ञ कराना, और दान लेना दान देना, ये छह मुख्य इनके कर्तव्य हैं। तो ब्राह्मणत्व का साधुत्व का स्वाभिमान है तब तो वह परिग्रह नहीं करेगा, और स्वाभिमान नहीं है अभिमान है, तो भी चाहे जितना भी मिल जाए वह भी कम है। इसलिए यहाँ पर इस 15वें श्लोक के अंतिम चरण से तात्पर्य बदलाया कि बसेषु परिभव नहीं पथ्य, जिसकी इंद्रियां वश में है, मन वश में है, उसका तिरस्कार अनादर राष्ट्र के विप्लव का कारण बन जाता है, और यह तो कामदेव साक्षात भगवान शंकर का ही परिभव किया था तिरस्कार, इसलिए काम का नाश हुआ। तो हमारे जीवन में जब अविद्या हो और अविद्या को मिटाना हो, तो जैसे कि चाहे देवता हो या असुर।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 36. Thank you.

स्मृतिपते अल्मासग्रीवो रक्षिताय सतेधिमधिर्यश्च रक्षिताताभ्यां नमोऽस्तु तौ नो मृडतां तेजं विस्मो यश्च नो त्वे स्थितमेन।

0: देव शंभो हर हर महादेव
1: शिव
0: नारायण नारायण नारायण वासुदेव नारायण

0: सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित भक्त वृंद, प्रवचन का विषय भगवद अनुग्रह से आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित मणिषा पंचक। शब्द के अर्थ को बताऊंगा। तत्पूर्व आचार्य से आप लोग सब परिचित है, क्योंकि ऐसा एक संस्था में आप लोग बैठे हैं जो उसी परंपरा के दशनामी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के परंपरा में ही सम्मिलित है। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सभी संत इसी दशनामी परंपरा में हैं। इसलिए तो मैं मानता हूं कि आप लोग एक सौभाग्य है कि एक ऐसे शाश्वत नित्य परंपरा में राज पथ पर आप उतरे हैं, जिसमें भले ही हमें किसी कारणवश कहीं इधर उधर भटक भी जाए, परंतु चूंकि राजमार्ग में आप है, जीवन से कभी नहीं भटकेंगे। भगवत भक्तजन ऐसे ही एक दिव्य परंपरा के आचार्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए। उनके व्यक्तित्व को हम लोगों ने उस दिन भी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जयंती 8 मई को उद्यापन किए। व्यक्तित्व को जानने के लिए, समझने के लिए क्या चाहिए? उस व्यक्ति के जीवन के आचरण, डेली लाइफ में वो कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे आचरण कैसे करते हैं, कैसे विचरण करते हैं, और ये बर्ताव, आचरण, विचरण वो उनके जीवन की जो आंतरिक स्थिति है, निश्चय है, उसी का बाह्य अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं आपके सामने दिखा सकता हूं कि सद आचरण, सद विचार, परंतु वो अगर हमारे जीवन में प्रतिष्ठित ना हो, हृदय के विश्वास ना हो, उस बातों पर भरोसा ना हो, तो नारायण वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता है। आंतरिक जो सच्चाई है वो एक न एक दिन प्रकट हो ही जाता है। इसलिए जीवन को, महापुरुषों के जीवन अथवा किसी भी व्यक्तित्व के जीवन को जब हम अध्ययन करते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके जो इनर पार्ट्स है, जो आंतरिक विश्वास है, वो उनके प्रत्येक पद पर, प्रत्येक कर्म पर, प्रत्येक आचरण पर वो झलकते। ऐसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में अगर आप उनके दैवी पुरुष, अवतारी पुरुष मान करके ही विचार करते हैं, तब तो उनके दर्शन हमारे जीवन को किसी भी प्रकार के एनलाइटेड नहीं कर सकते। मैं अपना अवतार है, परंतु वो एक मानव उस जीवन के उत्कर्ष को, जीवन के साधना को करते हुए उस अति मानव स्तर पर पहुंचे। इस प्रकार से जब मैं अपने व्यक्तिगत चिंतन करता हूं, मुझे बहुत आनंद होता है और जीवन के एक आदर्श के रूप में मैं उनको स्वीकार कर पाता हूं। नहीं तो ईश्वर रूप से, अवतारी पुरुष के रूप से जब हम उसको स्वीकार करते हैं, तो उनके जीवन में अगर कोई दोष भी दिखाई पड़ता, वो अवतार है, लीला है, कर सकते हैं, ऐसे मन जो है अनेक प्रकार के एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, परंतु वो समस्याएं, वो संघर्ष अपने जीवन में भी है। वो व्यक्ति किस प्रकार उस सामूहिक संघर्ष तत्कालिक परिवेश में कैसा समाधान करता हुआ अपने उस जीवन को दिव्य बनाया, वही हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन हम सब बोलते हैं भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, परंतु वो भी एक मानव से भगवान भगवत्ता को, मानवत्व से भगवत्व को प्राप्त किए, मानवता से। ये जो उनकी जो प्रोसेस है जीवन के, कैसे जीवन जिया, कैसे जीवन ग्रहण किए और जीवन में क्या प्राप्त किया, ये व्यक्तित्व का एक पार्ट। और ये स्टडी लाइफ एस्टैब्लिश किया जीवन में, उनके जीवन में एम्बिशन नहीं था, ऐसे भी नहीं मानते मैं एम्बिशन है, परंतु बाद में उस एम्बिशन को, उस जीवन के निश्चय को, बाकी जीवन में जो उनके स्थिरता है, शांति है, प्रशांति है, ईश्वर अस्तित्व में एक अटूट विश्वास है, वो उनके बाकी जीवन को देखने से लगता है। इसलिए भगवत भक्तजन, उनके माता और पिताजी के नाम से हम जानते हैं, शिव गुरु पिताजी थे और भद्रा मां। संतान नहीं था, औलाद कोई नहीं, कितने दुखी, एक दाम्पत्य जीवन के जो संघर्ष है, जो कष्ट है, वेदना है। और वही शिव गुरु और भद्रा के जीवन में हम देखते हैं, अनेक प्रकार की कोशिश हम करते हैं, परंतु कभी हमें यह पता नहीं लगता है कि हमारी कोशिश, हमारी चेष्टा, हमारी प्रचेष्टा से कुछ नहीं होने वाला है। जब वो परमात्मा दिव्य सत्ता हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह व्यवहार कर सकते, करते हैं, तब हम किसी कार्य को, किसी सृष्टि को, किसी निर्माण को कर सकते, अन्यथा हमारे कोई सामर्थ्य, कोई औकात नहीं है नारायण। हम कह सकते आचार्य यह अवतार है शिव के, साक्षात अवतार, उनके माता पिता को क्या कष्ट हो सकता है। नारायण उस जीवन को देखिए जो एक सृष्टि के लिए, एक संतान के लिए लालायित है, और उनके सारे प्रचेष्टा, शास्त्र ज्ञान, निष्ठा, आचरण, विश्वास आचार्य शंकर के पिताजी के अंदर नहीं थे। उनके जीवन को पढ़िए, फिर भी अगाध पांडित्य होते हुए भी सांसारिक जीवन में जो एक सृजन की आनंद सृष्टि की, उससे वो वंचित है। और इसीलिए जब हम शिव गुरु की जीवनी पढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक है, ईश्वर पर अटूट विश्वास है। दैनंदिन शंकर के अभिषेक आदि करते हैं, परंतु एक अंदर सुप्त वेदना है जिसको वो किसी से शेयर करता है, बोल सकते हैं, और किसी के पास बोल भी नहीं सकते हैं। बोलने पर भी उस दुख का कोई अपनोधन नहीं है नारायण। शिव गुरु भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, पहले तो काम्य प्रार्थना का बहुत किए कि आप जानते हैं समावर्तन के समय गुरु गृह से मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया गया, शास्त्रीय विधि अनुसार मैं ब्रह्मचर्य गुरुगृह में रह करके पालन किए, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। परंतु गृहस्थ जीवन का एक उद्देश्य होता है वंशज को रखना अपना कर्तव्य, तो इस भाव से वो भगवान से प्रार्थना करते थे। मां भद्रा के मन में वही वेदना, परंतु दोनों किन से प्रार्थना करते थे? एक दिन शिव गुरु भद्रा पत्नी को कहते हैं कि देखो, हम लोगों ने काफी प्रयत्न किया, ईश्वर से प्रार्थना किए, तुम्हें क्या लगता है? भद्रा निश्चूप होकर बैठी, उनके पास उस वेदना से कोमल हृदय पत्थर सा हो गया। कहीं ईश्वर अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है, कहीं उस विश्वास उस भरोसा को कोई और एक पार्ट हमें सदवाना चाहते हैं। ना ना, विश्वास करके मत जियो, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो, नहीं हुआ, नहीं मिला, नहीं दिया, ये प्रत्येक के जीवन में है, नहीं दिया, आर्गू करते हैं, लांछन लगाते हैं, परंतु वो मुंह से कुछ भी बोल नहीं सकती। शिव गुरु उनके जीवन का जो निश्चय है वो आज भद्रा के पास प्रस्तुत करते हैं कि देखो, हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो वेदना है, जो चाह है, वो हम अपने आदिदेव महादेव को निवेदन किया। और फिर कहते हैं, देखो विश्वास है, उन्होंने सुना है, वो निश्चय है कि वो उनके कानों तक मेरी जो प्रार्थना है, व्याकुलता है, आकुति, वो पहुंचा। अब कुछ करना नहीं है, ना हमारे पास सामर्थ्य है। शिव गुरु की वो जो पंक्ति है नारायण, व्यक्ति को हिलाता है। आचार्य शंकर की जीवनी को हम जानते हैं, परंतु वो जो आचार्य शंकर के पिता, वो जो निश्चय करके बतलाते हैं, और ये जो एक फल उनको मिलता है कि सारा जीवन के पुरुषार्थ का एसेंस जिनको वो निश्चय करके बैठ जाता है कि हमने प्रार्थना किया और विश्वास भरोसा के साथ उन तक पहुंचा, काफी कोशिश भी की, परंतु इस कोशिशों के बावजूद भी हमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, निवेदन प्रार्थना यही कर सकता हूं भद्रा। अब उनके अस्तित्व पर समर्पण कर दो। ये जो भाव है, समस्याएं घटनाएं अपने जीवन में नहीं आता है, ऐसा तो नहीं नारायण, और ऐसा भी नहीं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करते हैं। एक समय वो कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, एक समय उनको लगता है कि जीवन में कोई है जिसको हम ईश्वर माने चाहे ना माने, वो उनसे हम निवेदन एक बार करके देखे, अविश्वास से भर कर भी वो अस्तित्व के ऊपर एक बार प्रेयर कर बैठते हैं। घोर तर नास्तिक क्यों ना हो, उनके समस्या जब जीवन में उपस्थित होते हैं और जब देखते हैं कि वर्तमान समाज अथवा परिस्थिति पुरुषार्थ के द्वारा वो समस्या समाधान नहीं हो सकते, तब वो एक अविश्वास से भरकर भी प्रार्थना कर डालते उस अस्तित्व के प्रति। तो वो भी एक प्रार्थना है जिनके हृदय में अविश्वास है, अस्तित्व के प्रति कोई सजगता नहीं है, परंतु एक वो भी प्रार्थना है जिनके हृदय में पूर्ण विश्वास है, निश्चय है, प्रेजेंस का अनुभूति है, और वो पूर्ण जिस दिन व्यक्तित्व के जीवन व्यक्तित्व से वो प्रार्थना कि वो हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो इस जीवन को, इस शरीर को औजार बना सकता है, मैं उनके इंस्ट्रूमेंट की तरह बज सकता हूं, और कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते। पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय, गंभीर भरोसा उस दाम्पत्य जीवन में प्रतिष्ठित हो गया, शिव गुरु और भद्रा। और कालक्रम में भगवान शंकर स्वप्नादेश किए कि हे शिव गुरु, तुम्हारे घर जो है एक संतान जो सर्व गुण संपन्न जन्म लेने वाले हैं। बस जब हम पूरे घटनाओं को देखते हैं और वर्तमान जीवन को देखते हैं, नारायण एडुकेशन, सुरक्षा, निश्चिंतता, हम कितने भी कोशिश करें, हमारे इस जीवन से हम कर नहीं सकते।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज अमरनीति नायनार पुराणम, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे और एक संत की कहानी जो कि दक्षिण भारत से हैं। इनका नाम है अमरनीति यार। भक्त अमरनीति यार का जन्म चोल प्रदेश में पलयारे नामक स्थान में एक वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य यानी जो कि लेन देन का कारोबार करते हैं। जहां पर इनका जन्म हुआ वो अत्यंत ही शास्य श्यामल खेतों से भरपूर उपज होती थी। अमरनीति स्वर्ण, हीरे, मोती, रेशम और सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करना, प्रभु के भक्तों की को भोजन कराना, उनके वस्त्र कौपानी कौपीन आदि की व्यवस्था करना उनकी दिनचर्या थी और यही उनके जीवन का लक्ष्य। तिरुनल्लूर में मंदिर उत्सव के समय एकत्रित होने वाले सभी भक्तों के ठहरने की व्यवस्था उन्होंने धर्मशाला की स्थापना की और स्वागत सत्कार का उचित प्रबंध किया। एक दिन प्रभु शिव स्वयं

0: उन्होंने निवेदन किया, महाराज आपने जो वस्त्र रखने को दिया वह कहीं गुम हो गया है, उसके बदले में कृपया यह नया कौपीन धारण करें। उस शिवयोगी ने आक्रोश में आकर क्रोध से बोला, आज आपकी कलई खुल गई, आपकी नियत का पता चल गया। हे अमरनीतियार, हमारे कौपीन की चोरी करने के इरादे से ही आपने साधु संतों के स्वागत सत्कार का धूम रचाया हुआ है। लज्जित भक्त अमरनीतियार ने उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र आदि स्वीकार करने का आग्रह किया। अंत में ब्रह्मचारी ने एक और पुराना फटा सा कौपीन निकाला और कहा, इस फटे कौपीन के वजन के बराबर वस्त्र दे दो। अमरनीतियार ने हर्ष से पूर्व यह शर्त मान ली, जमीन पर डंडा गाड़ कर तुला लगा दिया। एक पलटे में ब्रह्मचारी का कौपीन रख दिया और दूसरे पलटे में धीरे धीरे अनेक प्रकार के वस्त्र चढ़ाना शुरू किया। ढेरों कपड़ों की गांठ रखने पर भी पलटा हिला तक नहीं। संपूर्ण स्वर्ण चांदी जवाहरात आदि रख देने के पश्चात भी कौपीन वाला पलड़ा भारी ही था। अत्यंत निराश होकर अमरनीतियार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यह कहकर पल्ले में बैठ गए, शरीर पर धारण की गई पवित्र विभूत और प्रभु के भक्तों की सेवा के प्रति हमारे प्रेम में यदि सत्य है तो यह दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। नमः शिवाय मंत्र का जाप कर, त्रिनलोक के शिव का ध्यान कर, जैसे ही अमरनीतियार पल्ले में बैठे तो दोनों पलड़े एकदम बराबर हो गए। इसके साथ ही उस शिवयोगी ब्रह्मचारी शिव ने अपना योगी का रूप छोड़ अपना शिव पार्वती सहित आकाश में दर्शन देने लगे। अमरनीतियार हर्ष से आनंद विभोर हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस तुला के पलड़े में अमरनीतियार की सारी संपत्ति रखने पर भी कौपीन भारी ही था। भगवान भक्त की ये परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या वो इस सांसारिक स्वर्ण जवाहरात आदि को महत्व देते हैं या नहीं। जब अमरनीतियार ने देखा कि उनकी सारी संपत्ति प्रभु के कपड़े के बराबर भी नहीं तुली, तो उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि जीवों की प्रेम भक्ति ही भगवान की भगवत कृपा के समक्ष तुल सकती है। हृदय में प्रवाहित प्रेम भक्ति को अलग पलड़े पर रखना संभव ही नहीं। अतः वे प्रेम पूर्ण हृदय सहित पत्नी और बालक के साथ स्वयं तराजू में के पलड़े में बैठ गए। उसी क्षण दोनों पलड़े समान हो गए। यहाँ दास्य सेवा ध्यान देने योग्य है। सेवा की सार्थकता मैं और मेरी की भावना से मुक्त होने पर है। सेवा करने वाले के हृदय में थोड़ी मात्रा में ही सही कर्तृत्व भाव प्रेम भाव शेष रहता है। उसको निशेष करने के उद्देश्य से चेकिलर, जो कि बहुत बड़े संत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा है, दास सेवा पर सबसे ज्यादा बल दो। हे भक्त, दास को तनिक भी स्वतंत्रता अनुभव करने का अधिकार नहीं होता, उसके सर्वस्व पर स्वामी का यानी कि प्रभु का पूर्ण अधिकार होता है। जिस कौपीन को अमरनीतियार ने एक साधारण पुराना वस्त्र समझा, वही उनके भक्तिभाव और सत्य साक्षात्कार का साधन बना। त्रिवाचकम की पंक्ति स्मरण करें, उसकी कृपा से उसके चरणों में नमन कर कृतार्थ हों। यही है अमरनीतियार की कहानी। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: तो कहता है, हमारे मनोरथ पूरा नहीं हुआ। पहले का संवादी भ्रम है, दूसरे का विसंवादी भ्रम है। ये देखो, ध्यान रख लेना। इसलिए मैंने आज पहले ही भ्रम के भेद की व्याख्या करना शुरू किया। यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति काचास्मनिमणि जले पेष्टे क्षीरम भवति

0: बुद्धि भवती है, बुद्धि का अन्वय करते जाना। तथा देव भ्रांत्या, हे देव हे शिव, इसी तरह कुछ जड़मति जड़धि भ्रांति से क्या करते हैं, भवत अन्यम भ्रांत्या भजती, आपको छोड़कर आपके सर्वव्यापकता को न जानने वाले, आपकी सेवा करना छोड़कर अन्य अन्यों की सेवा करने चले करते रहते हैं। आपकी सर्वव्यापकता को न जानने वाले भ्रांति से अन्य अन्य की पूजा करने लग जाते हैं। और हमारे महाराज जी ने कहा, अरे भाई राम की पूजा छोड़कर हनुमान की पूजा करने शुरू कर दिया, राम बड़े हैं कि हनुमान बड़े हैं? बोलो, राम मालिक हैं और उन राम मालिक की तो पूजा नहीं करते हैं, क्या करने लग गए? हनुमान जो राम के सेवक हैं उनकी पूजा करने लग गए। ले जी क्यों महाराज? बोले हनुमान जी के बारे में सुना है, बाल समय रज भक्त छिलिनो तब तीनों हूं लोक भयो अधियारो, काई सुत्रास ताई सुत्रास भयो जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जय जग में कभी संकट हुए। जितना भी जो भी संकट आएगा भगवान माने हनुमान जी सारे संकट को दूर करने वाले हैं। संकट मोचन हनुमान की जय। देव जी तो देखो हनुमान जी शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र है, शिव है। शिव के जो 11 स्वरूप है ना, रुद्र के जो 11 स्वरूप है उनमें से हनुमान जी 11वें अवतार है शिव के। लेकिन क्या करते हैं, शिव की पूजा न करके हनुमान जी की पूजा चलेगा, क्योंकि हनुमान जी सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। किसी ने कह दिया हनुमान जी का 40 पाठ करते हुए भी कुछ ठीक नहीं हुआ, रोग बढ़ता गया, तो फिर क्या करे? बोले ओ तब फिर महामृत्युंजय का जप करो। और किसी ने महामृत्युंजय का जप किया, जप करने पर भी रोग ठीक नहीं, क्या करे? बोले हनुमान 40 का पाठ करो। ले एक शुरू किया उसको छोड़ा, फिर दूसरा किया, दूसरा किया उसको छोड़ा, फिर तीसरा किया उसको छोड़ दिया, फिर चौथा किया। ये क्या है बोलो? भ्रांति। सभी एक ही परमात्मा का स्वरूप है, हनुमान चाहे हो चाहे शिव हो, सब एक ही परमात्मा का स्वरूप होने के कारण वही सर्वरूप है। ये बुद्धि करके एक ही के आश्रय में न रहकर व्यक्ति भ्रांति से अनेक का आश्रय ले लेते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे भ्रांत व्यक्ति है संसार में, सारे प्रयोजन पूरा करने में समर्थ भगवान शिव होते हुए भी शिव के ही अनन्य शरण, आपके अनन्य शरण को न करके उसके भी जाएंगे, उसके भी जाएंगे। इससे वो बढ़िया है, उससे वो बढ़िया है। संसार इतनी भ्रांत है कि भटक रहा है, परमात्मा के बारे में ही भ्रांत है, निश्चय नहीं कर पा रहा है ना? निश्चय नहीं कर पा रहा है, भ्रांत है। तो एक दृष्टांत देते हैं ना महात्मा, किसी एक गांव में एक किसान था, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ कि खेती करने के लिए उसको बहुत कठिन हो गया, बारिश नहीं हुई तो महात्मा आए, क्या हुआ बेटा? बोले कि महाराज क्या करें, देखिए बारिश नहीं हो रही है, पानी हो तो खेती करें, मेरे इतना जमीन है अब पानी नहीं है, मैं क्या करूं महाराज? महात्मा ने इस विचार किया, अरे बेटा जिस जमीन में तुम खेती करना चाहते हो उस जमीन के नीचे अपार जल है, जल का स्रोत है, तुम एक काम करो उसमें एक गहरा कुआं खोद लो तो पानी पानी है, फिर उसको लिफ्ट करके खेती कर लो, बारिश नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? महाराज कितनी गहराई खोदना पड़ेगा, महात्मा ने कहा कि लगभग 60 फुट खोदना पड़ेगा। 60 फुट यदि तुम खोदोगे तो पानी मिल जाएगा, फिर नीचे पानी नीचे ऊपर ताव खींच लो, उसके बाद खेती कर लो। बारिश न हो तो भी तुम खेती कर सकते हो। तो वो महात्मा तो चले गए। अब वो कुआं खोदने शुरू किए, खोदता गया, 10 फुट खोदा, महात्मा ने 60 फुट खोदने के लिए कहा था। उसके नीचे खोदना थोड़ा उसको कठिनाई आई। महात्मा ने 60 फुट खोदने के लिए कहा था, 10 ये हो गया, बगल में फिर दूसरी जगह 10 खोदने शुरू कर दिया। कितना फुट हो गया? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, 20 हो गया ना। अब 20 तो हो गया, अब कितना रहा? 40 रहा ना। फिर 10 दूसरा खोद लिया उसने, हिसाब लगाया उसने, 30 हो गया, हाँ आधा हो गया। अब फिर क्योंकि गहराई में जाना उसको कठिनाई पड़ रहा था, और 60 फुट खोदो तो पानी आ जाएगा। महात्मा ने कहा 60 फुट खोदना है, तो 30 फुट खोद चुका वो। फिर उसने 10 फुट तीसरा खोद लिया, चौथा खोज लिया, 40 हो गया। ऐसे ही 6-10 फुट के 6 गड्ढे खोद ली, 60 फुट पूरा हुआ कि नहीं? है? हो गया कि नहीं? अब पानी उसके मिलेगा कि नहीं? है? पानी मिलेगा कि नहीं बोलो? नहीं मिलेगा। तो क्या वो गलती कर रहा है? है? वो गलती कर रहा है और हम सही कह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। 10 मिनट शिवजी की पूजा किया, महात्मा ने कहा 1 घंटा भगवान की सेवा करो। महात्मा ने क्या कहा? रोज 1 घंटा भगवान की सेवा करो। तो 10 मिनट शिवजी की सेवा की, और 10 मिनट कृष्ण की सेवा की, और 10 मिनट राम की सेवा की, 10 मिनट हनुमान की सेवा की, 10 मिनट देवी की सेवा की, 10 मिनट पता नहीं किस किस की सेवा करते हो, करते हैं कि नहीं? तो 1 घंटा पूरा होता है कि नहीं हमारा, बोलो। महात्मा ने कहा 1 घंटा पाठ स्तोत्र पाठ किया करो शिवजी का, 1 घंटा पाठ किया करो स्तोत्र पाठ। तो उसमें से एक स्तोत्र 5 मिनट का देवी का कर लिया, और दूसरा 5 मिनट का गणेश का कर लिया, फिर 5 मिनट का किस किस का करते हो बोलो? जितने भी नाम प्रसिद्ध हैं सभी का करते हैं कि नहीं? तो परिणाम वो किसान सही है कि हम सही है बोलो? है? जो किसान की हालत है वही हमारी हालत है, है? ये कहीं भगवान में पूरी निष्ठा करके उसी का ही लगातार निरंतर अनन्य भाव से 1 घंटा एक ही देवक देवी का परमात्मा का अनन्य भाव से पूजा करोगे, किसी और की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। ये बुद्धि तो है नहीं। स्तोत्रों में जो फलश्रुति सुन लेते हैं क्या है ये, अनेक स्तोत्र के पाठ करने की रुचि हमारी क्यों बढ़ती है, क्यों हो रही है ये स्थिति था मालूम है? स्तोत्रों में जो अंत में फलश्रुति सुनते हैं ना, बस वो फलश्रुति को सुनने के बाद हम निश्चय कर देते हैं, अरे इससे तो ये ठीक है, इससे भी ये ठीक है, इससे ये ठीक है, इससे वो ठीक है। ले जी मैम ने स्तोत्र पाठ करते करते फिर अचानक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं बोलो? अब भाई मैम ने स्तोत्र का कह दिया पुष्पदंताचार्य जी ने, महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वम्। लेव जी इतना सुंदर फल स्तुति बता दिया, तो स्तोत्र पाठ कर दिया तो हो गया सब कुछ। तब फिर उसके बाद शिवतांडव पाठ करने शुरू करते हैं, है? क्यों करते हैं? शिवतांडव में भी फलश्रुति आ गया। फलश्रुति क्या है? पूजा अवसान समय दश वक्त्र नित्रम या शंभु पूजन परम पटति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम ददा प्रददाति शंभो। जो ये शिव तांडव कृता तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करता है भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि लक्ष्मी हमेशा आगे खड़ी हो जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? ये फलश्रुति सुनता है तो फिर वो महेश आमना परम तत्व वो छोड़ देता है, फिर जटाटवी गलत ज्वल करने लग जाता है, क्योंकि इसमें फलश्रुति क्या आ गया, लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रदधाति जम्बो ले जी, फिर ये कर लेता है। और फिर उसके बाद लिंगाष्टकम पाठ करता है, हैं? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। फिर वो जन्मज दुख, शरीर संबंधी सारे दुख को नाश करने वाले भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा का प्रणाम करते ही लिंगाष्टकम इदम पुण्यम यह पठित शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये फलश्रुति सुनता है तब तक क्या बढ़िया स्तोत्र है, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए महाराज। फिर उसको भी पढ़ता है तो सारे सारे तो दुनिया भर के इतना होता है सुबह स्तोत्र, और क्योंकि एक में विश्वास नहीं करता, जबकि सब एक ही है, जो भी पाठ करो एक ही है, एक ही परमात्मा है, ये बुद्धि तो होती नहीं, तब फिर अलग अलग स्तोत्र के पाठ करता है। शंकराचार्य जी बड़े सुंदर कह रहे हैं, यथा बुद्धि सुक्तौ रजतमिति काचास्मनि मणि जले पेष्टे क्षीरम भवति मृग तृष्णा सुसलिलम तथा देव भ्रांत्या भजति भवत अन्यम जड़मतो महादेवे सत्सम त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते। लेकिन वह ये मानता नहीं कि एक ही आपके आश्रय में रहकर महादेव ही सब कुछ हैं, ये निश्चय न कर पाने के कारण भ्रांति से भटकते रहते हैं, हजार देवताओं का कल्पना करते हैं और हजार देवताओं की उपासना करते हैं, हजार देवताओं की स्तुति करते हैं, हजार देवताओं की सेवा करते हैं, इस तरह भटक जाते हैं कि 60 फुट एक ही जगह खोदने के लिए महात्मा कहे थे, हैं? महात्मा ने क्या कहा था? महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो। महात्मा का आशय क्या था? एक ही जगह 60 फुट खोदो, ये कहने का अभिप्राय था। महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो, 60 फुट खोद लिया, पानी नहीं मिल रहा है। ले जी, तो प्रयोजन क्या हो रहा है? हम कर तो रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ कर लेने पर भी कुछ फल सामने नहीं आता, करते हुए भी हम हमेशा असंतुष्ट का असंतुष्ट ही रहते हैं कि नहीं? करते हुए भी असंतुष्ट के असंतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं करने में हमारी त्रुटि है, भ्रांति है, कहीं ना कहीं हमारी भ्रांति है। भ्रांति क्या है? इसको भी करो, इसको भी करो, अरे भाई एक ही पर करो, निष्ठा की बात होती है, ये निष्ठा पर कह रहे। और आगे कहते हैं, गभीरे का सारे विसति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मति ही समर्पेकं चेतस सरसिज मुमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम जनैह न जानाति किमहो। आहा, हे महाराज, ये संसारी लोग सुनते तो है कि भगवान की पूजा करो तो सब प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, तो किस विधि से पूजा करें? तो किसी ने कहा भगवान शिव कमल के फूल बड़े प्रसन्न हैं, कमल फूल से शिवजी की पूजा करोगे तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने भी जब भगवान शिव की पूजा करना शुरू किया तो श्रावण के सोमवार के दिन विष्णु ने संकल्प किया कि भगवान शिव को मैं 1000 कमल फूल से पूजा करूंगा। संकल्प कर ली और 1000 कमल का फूल टोकरी में रखा और संकल्प करके आचमन प्राणायाम आदि सब करके पूजा आरंभ की और शिव सहस्र नाम ले ली हाथ में। ओम शिवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम भवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम मृडाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम हराय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि। करते करते करते पाठ करते गए, कमल पुष्प चढ़ाते गए। भगवान शिव ने कहा इसकी मेरी कितनी निष्ठा है जरा देखें तो सही है, मेरी पूजा में इसकी निष्ठा कैसी है जरा देखें तो सही। भगवान शिव ने उसके टोकरी में से एक कमल का फूल, मैंने स्तोत्र पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने, हटा दिया, गायब कर दी। अब भगवान शिव मन विष्णु 1000 नाम पढ़ते हुए चढ़ा रहे थे है? अंतिम नाम 999 नाम का उन्होंने पाठ कर ली और कमल का फूल चढ़ाया। एक नाम बचा है नामावली में और इधर टोकरी देखते हैं तो खाली, एक फूल मिला ही नहीं। और देखो अंग भंग होता है तो अंगी विकल हो जाता है। तुमने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 कमल पुष्प चढ़ाकर अर्चना करूं, यदि 1000 न चढ़ाकर 999 चढ़ा ली तो 1000 चढ़ाने का फल मिलेगा नहीं, 999 चढ़ाने का फल बेकार हो जाएगा। प्रतिज्ञा संकल्प तुमने जो की कितनी का, मैं केवल कमल पुष्प चढ़ाकर सेवा करूंगा, इतना कहते तो जितना मिला उतनी से तुमको काम चल जाता, लेकिन तुमने 1000 संख्या निश्चित करके प्रतिज्ञा कर ली तो 1000 ही चढ़ाना पड़ेगा, 999 जो फूल चढ़ाओगे उसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध, बेकार हो जाएगा, अंग भंग हो गया तो अंगी भंग। अब भगवान विष्णु को बड़ा मुश्किल पड़ गया, प्रतिज्ञा तो कर चुके हैं 1000 चढ़ाऊंगा, क्या उनके प्रतिज्ञा भगवान शिव नहीं जानते थे कि 1000 चढ़ाऊंगा। कल जाकर यदि भगवान शिव ने कहा तूने तो 1000 चढ़ाऊंगा प्रतिज्ञा की थी, 999 क्यों चढ़ाया, ये क्यों नहीं चढ़ाया, इसलिए हम फल नहीं देंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, कह दिया तो हम क्या करेंगे। तो प्रतिज्ञा हानि किया तूने, तेरी प्रतिज्ञा हानि हुई। तो भगवान शिव बहुत विष्णु बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐसा भी नहीं है कि संकल्प किया जिस आसन में वो फिर उठे गए और कमल फिर दूसरा लेके आए तब फिर वो संकल्प टूट गया, अधूरा हो गया, आसन भंग हो गया, आसन भंग हो गया तो खत्म। हम लोग इस बात का ध्यान तो देते नहीं है, करते सब हुए लेकिन विधि से नहीं करते है? जब करने बैठते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ए रामो दूध आया कि नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय है। अब क्या देखो तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, 108 बार मैं जप करूंगा, 108 बार हुई, तुमने बीच में ये रामू कह दिया तो खंडित हो गया। अब यह एक रामू कहने के बाद फिर तुमने शुरू से शुरू करते माला और एक रामू न के बिना पूरा करते तो एक माला पूरा हो जाता, फिर दोबारे फिर शुरू करते करते फिर बीच में आ गया। अरे बेटा उठा के नहीं रामू, तो देखा तो ने चाय बनाना था उसको, आज स्कूल जाना है जरा उठा दे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्या हुआ भाई, प्रतिज्ञा हानि। तो सब कुछ करते हुए संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि विधि में त्रुटि है। इसी तरह त्रुटि हो जाता है तब रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो तुम कहते हो हमने सब किया फल नहीं आ रहा है, यहां यही कह रहे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया पता है, उठ के जाता हूं तो पूजा खंडित हो जाता है, अब प्रतिज्ञा की 1000 कमल चढ़ाना है, एक फूल की कमी हो गई क्या करूं, उनको झट स्मृति आ गई, सभी भक्त लोग मुझे हमेशा क्या कहते हैं कमल नयनम, सब लोग मुझे बार बार कमल नयन कमल नयन कमल नयन कहते हैं, इसका मतलब मेरा नेत्र कमल है। नेत्र कमल है तो फिर भगवान को कमल की प्रसन्नता है, कमल चाहिए। दो है, एक से मैं देख लूंगा, एक शिव जी को चढ़ाऊंगा। फाट उन्होंने वो अपने नेत्र निकाला और चढ़ा दी। बस किसने? वैष्णवो सुन लो, किसने? विष्णु ने। हैं, तुम तो नाम भी लेने नहीं चाहते हो, शिवा टाका मारो कहे? कपड़ा शिवानु छे नहीं कहेंगे, कपड़ा टाका मारवानु छे। टाका क्यों मारना है? शिव क्यों नहीं सियोगे? क्योंकि शिव आ गया ना उसमें। अरे रे रे रे रे रे रे, लेव जी ये कुछ दुराग्रही है, आप लोग नहीं है? हैं, ऐसे भी हैं भाई। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सच्ची घटना है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। प्रेम कुटीर में आप लोग भी जानते हो, मैं प्रवचन कर रहा था, बहुत पहले की बात है, और प्रेम कुटीर के दयाराम मेवा वाला तो आप जानते हो ना, बहुत लोग जानते हो। दयाराम मेवा वाला बूढ़े काका थे, सब लोग काका कहते हैं, दयाराम काका मेवा वाले, और उनकी आदत भी आप लोग जानते हो, शिवोहम शिवोहम, जहां भी चलते थे, सड़क में भी चले तो जोर जोर से शिवोहम, और कहीं भी शिवोहम जोर जोर से करते हुए चलते थे। एक दिन की बात है, कुछ कृष्ण भक्त साधु, कृष्ण भक्त साधु, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए ना, कृष्ण भक्त साधु, वो मेरे पास आए थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे, मैं भी उन भी, तो बैठे थे, हाथ में माला भी जप रहे थे और बात भी कर रहे थे हमसे। हैं, उनके हाथ में माला भी घूमती रहती है ना आज से, तो बात भी कर रहे थे। इतने में वो आ गए दयाराम मेवा वाले, शिवो हम करते हुए मेरे कमरे में घुस गए जोर जोर से। तो जहां उन्होंने जोर जोर से शिवो हम कहने लग गए, ये जो कृष्ण भक्त साधु उन भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण, जोर, सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्ची घटना। ओहो, उनका शिवोहम ताकि हरे कृष्ण से गायब हो जाए, दब जाए, वो सुनना ही नहीं चाहे। तब फिर दयाराम काका ने मुझे प्रणाम किया, उसके बाद फिर उन साधुओं को प्रणाम करने के लिए झुके तो उनको मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हमका हमारा चरण न मत छू। बोले क्यों महाराज, आप तो साधु है। बोले नहीं नहीं आप तो शिव हो, हम तो जीव हैं, हम तो परमात्मा के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, आप तो शिव हो क्योंकि आपने शिवो हम कहा, अब शिव हमारे चरण छुए? ना ना ना, छूने नहीं दिया। अब ये क्या है बोलो, ये क्या है? पूर्वाग्रह है कि नहीं, दुराग्रह है कि नहीं है? उनको कह देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं महाराज हम अपना चरण क्यों छुआएंगे, आप चरण मत छुओ, आप भजन करो, हम भी भजन करते हैं, चरण छूने की क्या जरूरत, दूर से हाथ जोड़ लो, कह देते तो खत्म हो जाता। वो उन्होंने व्यंग किया, व्यंग उक्ति उनकी, आप शिव है, साक्षात शिव है, तो हमारा चरण क्यों छोएंगे आप शिव? लेव जी ठीक है, वो साक्षात शिव है तो तुम छू लो, हैं? वो साक्षात शिव है तो तुम उठ के छू लो, तुम क्यों नहीं छू रहे हो? कह तो दिया कि आप शिव है, इसका मतलब क्या है? क्या सही भावना से, सही हृदय से ये बात अभिव्यक्ति हो रही है? दुराग्रह है। तो भगवान विष्णु ने तो आंख निकाली और चढ़ा दी, तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह, तुम्हारी भक्ति, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो बोलो? बोले नहीं महाराज, आप इसी तरह प्रसन्न रहें, हमको इतनी और कुछ नहीं चाहिए। तब फिर वो आंख भगवान ने वापस कर दी, उनका आंख जैसा का वैसा हो गया। साथ में सुदर्शन चक्र दिए। विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शिव के दी हुई है, ध्यान रखना। हाँ? ये कैसे चक्रपाणी हो गए आज विष्णु? किसके कृपा से? शिव कृपा से। कैसे? उन्होंने अनन्य भाव से भक्ति की और अपना नेत्र ही उनको सर्वस्व मानकर नेत्र कमल चढ़ा दिया उनको, कोष नुकसान नहीं हुआ, ये निष्ठा की बात है। लेकिन कुछ लोग ये देखते हैं भगवान शिव को कमल प्रिय है तो कमल से अर्चना करने के लिए गहरे से गहरे सरोवर में कमल के फूल लेने के लिए आपने जीवन की भी बाजी लगाकर उस सरोवर में घुसते हैं और कमल तोड़कर लाते हैं तब आपकी पूजा करते हैं। एक ये गभीरे का सारे बिसती और दूसरा बिजने घोर बिपिने। कुछ लोग भगवान शिव को जंगल के कुछ फूल ऐसे बहुत प्रिय है, जैसे पहले भगवान शिव को केतकी का फूल, केवड़ा का फूल अति प्रिय था, अति प्रिय। और वो केवड़ा घोर जंगल में होता है और कांटे कांटों के बीच में होता है केवड़ा। लेकिन जिस दिन से केवड़ा ने भगवान शिव से झूठ बोला, ब्रह्मा के पक्ष में लगकर भगवान शिव से झूठ बोला, तो भगवान शिव ने उसका तिरस्कार कर दिया। तब केवड़ा रोने लगा, महाराज आप हमेशा मुझसे प्रिय करते थे, अब आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। महाराज ऐसा मत करो, दया करो, कृपा करो। तो भगवान शिव ने कह दिया ठीक है, साल में एक दिन मैं तुमको स्वीकार करूंगा, और कोई व्यक्ति यदि उस दिन तुम्हारे फूल से, तुमसे यदि मेरी अर्चना करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होगा। केवड़ा तीज, उस दिन से उसका नाम ही अमर हो गया केवड़ा तीज, और उस दिन भगवान शिव को केवड़ा अति प्रिय है। उसके लिए वो केवड़ा खोजने के लिए घोर जंगल में जीवन को बाजी, कहां बाघ भालू शेर चीता रहते हैं, वहां पर भी व्यक्ति जाता है और केवड़ा को फूल तोड़कर लाता है और भगवान शिव को चढ़ाता है। विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मती। एक कमल तो होता है सरोवर में खिलने वाला, एक कमल होता है हिमालय में होता है जहां बर्फ है, वहीं वो फूल खिलता है, उसका नाम है नील कमल। आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, विशेष करके भगवान शिव को केदारनाथ में, उससे भी ऊपर जहां बर्फ बर्फ है वहां से नील कमल लाकर भगवान शिव को पूजा करते हैं। वहां के पुजारी आप लोगों को प्रसाद के रूप में नील कमल का फूल देते हैं और वो शिव को नील कमल प्रसन्न है करके कठोर से कठोर, जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां बर्फ ही बर्फ है, ऐसे जगह भी व्यक्ति जाकर नील कमल को तोड़ के लाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये सब मूर्ख हैं। ले जी शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब मूर्ख हैं। नील कमल के लिए अपने जीवन की बाजी लगा रहा है, कमल के फूल के लिए गहरे से गहरे सरोवर में जा रहे हैं, केवड़ा के लिए घोर से घोर जंगल में जा रहे हैं, ये नहीं जानते भगवान को सबसे, इन सबसे भी ज्यादा प्रिय फूल उसका हृदय है। और अपना हृदय तो अर्पण करते नहीं है और खाली कमल का फूल के लिए गहरे सरोवर में डूबने जाएंगे, नील कमल के लिए पहाड़ की चोटी में जाएंगे, केवड़ा फूल के लिए जंगल के घोर जंगल में भटकेंगे, लेकिन ये सब मूर्ख है। मैंने तो इतनी समझ लिया महाराज, न मैं नील कमल लाने वाला हूं, न सरोवर के कमल लाऊंगा, न केवड़ा ले आऊंगा। आपको इन सबसे भी ज्यादा प्रिय जो सबसे बढ़िया फूल तो क्या है, समर्पेकम चेतस सरसिज, ये तो चेतस सरसिज, हृदय कमल, हृदय रूपी कमल को कोई अर्पण नहीं करता। और मैं जानता हूं उमानाथ, ये संबोधन है, हे उमानाथ आपको सबसे ज्यादा प्रिय तो हृदय कमल है और मैं उसी हृदय कमल को आपके चरण में समर्पण करता हूं, बाकी सरोवर में पहाड़ों में जाने की हिम्मत मेरी नहीं है। बस समर्पेकम चेत सरसिज उमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम। बस अपने पास है, पैदा से ही अपने पास है, न कहीं पहाड़ की चोटी में जाना, तुम जहां हो वहीं तुम्हारा हृदय ही है, उस हृदय कमल को वहीं आराम से भगवान शिव के चरण में अर्पण कर दो तो फिर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और वो करते नहीं, जड़मती इधर उधर भटकते रहते हैं भगवान को खुश करने के लिए। सुखे नावस्था तुम जन इह न जानाति किम हो। ओहो आश्चर्य की बात है, जन न जानाति, इस बात को संसारी लोग अज्ञानी लोग नहीं जानते, इसीलिए हृदय कमल को तो भगवान के चरण में अर्पण नहीं करते और बार बार से इधर के भौतिक फूलों को खोजते भटकते रहते हैं। सबसे बढ़िया हृदय कमल अर्पण करो और सुखपूर्वक आनंद से रहो। मैं तो यही करूंगा भाई, न पहाड़ में जाऊंगा, न जंगल में जाऊंगा, न सरोवर में जाऊंगा, बस आराम से यही बैठे बैठे यही आपके लिए हृदय कमल अर्पण है पारस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: हम लोग भगवान की कृपा से स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें विविध प्रकार के यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। शिव महिमा के 15वें श्लोक पर विचार चल रहा है, उच्चारण कर ले पहले, नहीं तो रह जाएगा कथा।

श्लोक के अंतिम चरण में पुष्पदंताचार्य जी श्लोक के तात्पर्य को बदला देते हैं। यही श्री महिमन का एक वैशिष्ट है। तेरहवें श्लोक के अंतिम बताया था, न कस्यापि उन्नते शिरस्त्वय अवनति। भगवान के चरणों में सिर का झुकाना सभी के लिए उन्नति का भोग और मोक्ष प्रद है। जैसा कि अभी आप लोग पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय अखंडा जी महाराज के प्रवचन से सुन रहे थे कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सीमित अहंकार है, अभिमान तो पतन का कारण है पर स्वाभिमान उत्थान का कारण है। जैसे किसी को स्वाभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रेमपुरी का सत्संगी हूँ, साधक हूँ, मोक्षु हूँ, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं ज्ञान वृद्ध हूँ, वयोवृद्ध हूँ, यदि ऐसा स्वाभिमान है तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल पड़ेगा। तो स्वाभिमान से हम अपने कर्तव्य की तरह से सावधान रहते हैं, प्रमाद नहीं होता है, और अभिमान से प्रमाद होता है। देखो दोनों में इतना ही अंतर है, अभिमान से प्रमाद, स्वाभिमान से आदमी सावधान रहता है। अभिमान है तो क्या सोचते, हमारी मर्जी कुछ भी करे, कौन बोलने वाला है, किसकी हिम्मत बोलने की, कुछ भी हम कर सकते। और स्वाभिमान है तो आप अपने आप अपने कर्तव्य कर्म में सावधान रहेंगे, दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी सो गए तो जल्दी उठ गए तो आपको पता है कि हमको 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। कोई ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान है तो जल्दी से उठ करके संध्या उपासना करेगा, भगवान सूर्य को अर्घ देगा, गायत्री महामंत्र का जाप करेगा, इसके बाद तुरंत जो है प्रेमपुरी दौड़ कर आएगा। और मान लो अभिमान है तो क्या सोचेगा, अपनी मर्जी चाहे 10 बजे उठो, 10 बजे उठना है, इसके बाद में 11 बजे रह सकता है, फोन कर देगा जरा ऑफिस संभालना, जरा देर आता। तो दोनों में इतना ही अंतर है। और हमेशा जो ईर्ष्या होती है वह दूसरे के गुण को, कला को न सहने से। जैसे कि जो ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व या साधकत्व, मोक्षुत्व के जो सत्कर्म है, गुण है, कला है, उस पर जो अमल नहीं कर सकता, नहीं चल सकता है, वह उससे ईर्ष्या करता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, ब्राह्मण से ईर्ष्या करेगा, देवता से ईर्ष्या करेगा, गुरु से ईर्ष्या करेगा, यहाँ तक कि माता पिता से भी लोग करते हैं। कहते ये सब अंध परंपरा, पुरानी परंपरा वाले हैं, ये लोग जो है ना गणेश युग के हैं, बस एक धर्रे पर पहले गाड़ी की तरह चल रहे हैं। भाई जब नींद आए तो सो जाओ, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, और जब नींद खुले चाहे 8 बज रहा हो चाहे 10 बज रहा हो, उठ जाओ। ये जो है अभिमान का लक्षण है। तो 13वें श्लोक के अंतिम चरण में साफ साफ बता दिया पुष्पदंताचार्य जी ने कि भगवान के चरणों में सिर का झुकाना भोगप्रद और मोक्षप्रद है। 14वें श्लोक के अंतिम चरण में तात्पर्य बतलाया था कि भगवान का स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः। भगवान शंकर प्राणियों के भय को भंग नष्ट करने का स्वभाव है, शील है। ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको स्वरूप कहते हैं, और उसके अंदर सामर्थ्य है यतो वा इमानि भूतानि जातानि जीवन्ति, उसका सामर्थ्य है। और उसका स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः, आनंद स्वभाव है, सबको आनंदित करना,
प्राणियों के दुख को दूर करना। जिस अविद्या से हम लोग घबराते हैं उसी अविद्या को भगवान ने अपना अलंकार बना लिया, गले में धारण कर लिया हलाहल को। इसके बाद जब जीवात्माओं के अंदर कामना हुई, उस कामना को भंग करने के लिए ये 15वां श्लोक है। जिस कामना से आप परेशान होते हैं उसी काम की लीला 15वें श्लोक में बताया कि कामना से क्या फायदा है क्या नुकसान है दोनों का, जिसको माल की भाषा मूल्यांकन भी कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुर नरे, चाहे वह देवता हो या असुर या नर, जिसके ऊपर कामदेव के काम के बाण का जो है प्रहार होता है वह वहां पर अपना काम करके ही छोड़ता है, स्वभाव है। काम शब्द का अर्थ है इदम करिष्यामि या इदम में स्यात्, संक्षेप में कहें तो इदम में स्यात् का अर्थ है काम, यह मुझे हो जाए और यह न हो, इसी का नाम कामना है। प्रत्येक आदमी जब से पैदा हुआ और जब तक जीवित रहता है तब तक यही इच्छा करता है कि भगवान कृपा करना ऐसा हो जाए, भगवान कृपा करना वैसा हो जाए। एक विद्यार्थी था, बड़ा अच्छा दक्ष था, परीक्षा में उसने जरा कुछ गलत टिक लगा दिया, टिक लगाने का आजकल होता है ना। परीक्षा में था कि भारत की राजधानी कहाँ है और जापान की राजधानी कहाँ, बेचारा जल्दबाजी में उसने लगा दिया भारत की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी दिल्ली लगा दिया। अब जब मंदिर में आया तो याद आया कि हमने जो है जरा वो जो टिक लगाया गलत लगाया, लगा भगवान से प्रार्थना करने, भगवान आप कृपा करके रातों रात भारत की राजधानी टोक्यो बना दो, जापान की दिल्ली। उसके पिता ने सोचा कि यार इतना देर हो गई, अभी तक हाथ जोड़ करके बैठा ही है, क्या बात है, जाके बाजू में सुनने लगा तो यही जोर से बोला भगवान कृपा करो राजधानी बदल दो, नहीं तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, साल भर की परिश्रम बेकार। पिता ने कहा कि बताओ इसके लिए भगवान यदि ऐसा करे तो कितनी व्यवस्था हो जाएगी। यही हम लोगों की कामना होती है, बस भगवान से कहते हैं कि ऐसा हो जा ऐसा न हो, इसी का नाम है कामना। यही है काम, इच्छा विशेष। यदि मान लो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ले तो दोनों देशों में बड़ा भारी महाभारत छिड़ जाएगा, परंतु भगवान को मालूम है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसी प्रार्थना कर रहा। भले ही विद्यार्थी नादान है पर भगवान नादान नहीं, तो जीवात्मा भगवान को भी अपनी इच्छा अनुसार घुमाना चाहता है क्योंकि यह अल्पज्ञ है। तो यह जब हमारे जीवन में कामना आती है तो कामना इदम में स्यात् को लेकर के जब आती है तो मनुष्य उसी के पूरा करने में लगा रहता है। ये कामना तो पूरी नहीं होती पर हम लोग पूरे हो जाते हैं। आज तक कभी भी किसी की भी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई है। शास्त्रकार कहते हैं साक्षात जिसके ब्रह्म लाडले हैं, भगवान राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात निर्विशेष चैतन्य के ही अवतार आनंद के अवतार है, उस माँ बाप की भी कामना पूरी नहीं हुई। दशरथ जी जब प्राण त्यागे तो उनकी कामना थी हा राम मैं आपको सिंहासन पर बैठे नहीं देख सका। तो देखो वो ब्रह्म जिसका बाप है ऐसे दशरथ महाराज, उनकी भी कामना कहाँ परिपूर्ण हुई। ये कामना का स्वभाव है जो कभी न परिपूर्ण हो, उसी की नाम कामना है।
पर हम लोग अपने कामना को परिपूर्ण करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी देवताओं की कामना है कि तारकासुर का वध हो। तारकासुर की वध के लिए कामदेव को प्रेरित किया कि निष्काम भगवान शंकर के ऊपर तुम अपना काम बाण का प्रहार करो। पहले तो मना कर दिया, परंतु जब देवताओं ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो उनकी प्रशंसा में तारीफ, तारीफ जो है ना एक मीठी जहर है, उनकी प्रशंसा में बेचारा बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया वैसे ही बेचारा भस्मभूत हो गया, भगवान के ज्ञान अग्नि से उसका नाश हो गया। इधर देवताओं की कामना अधूरी रह गई। देवताओं ने तो सोचा था कि जैसे कि अन्य देवताओं को, मनुष्यों को, असुरों को कि कामदेव अपने काम से व्यथित कर देता है, वैसे ही देवाधिदेव महादेव को भी यह जो है चलायमान कर देगा, परंतु विपरीत परिणाम निकला। सारे देवताओं ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि महादेव जरा ठहरो ठहरो, कि जब तक बोलते तब तक तो भस्म हो गया। देवताओं ने कहा कि हम लोग तारकासुर से पीड़ित हैं, इसलिए हम लोगों ने इससे प्रेरित किया है, इसलिए इसका कोई अपराध नहीं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, अभी कामदेव अनंग हो करके, अनंग मतलब कि बिना शरीर के अशरीरी हो करके ये सारा काम करेगा। फिर भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया है, पार्वती से ब्याह करके और देवताओं के संकट को मिटाया है। यह तो पौराणिक कथानक है, परंतु हमारे जीवन में भी जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो उसको निवृत्त करने के लिए दुनिया वाले यही सलाह देते हैं। भगवान शंकराचार्य देवा शब्द का व्याख्यान कई जगह किए हैं, द्योतनात देवा इंद्रियाणि, ये हमारी इंद्रियां विषय को प्रकाशित करने से, आंख रूप को प्रकाशित करती है, कान शब्द को, ये इंद्रियां हमारी ये देवा हैं। इंद्रियां जब व्यथित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो ये इंद्रियां जो है फिर जो है उस कामना के अनुसार प्रवृत्त होती है। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि भाई देखो अब तुम ब्याह कर लो, बहुत तुमने पढ़ लिया, लिख लिया, साक्षर हो गए, पैसा कमा लिया, नौकरी भी लग गई, बिना ब्याह के जो है ना तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं होगा, तारकासुर का वध नहीं होगा। अब बेचारा ब्याह कर लिया, इसके बाद और नई समस्या जुड़ गई, बच्चे हो गए, इसके बाद और नई समस्या। समस्याओं का समाधान केवल भगवान के चरणों में है, कि जब भगवान के चरण का हम लोग आश्रय लेते हैं तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। स्मर स्मर्तव्यात्मा नहीं बसीषु पथ्य परिभव, इस श्लोक का सार बतला दिया, जिसकी इंद्रियां बस में है, मन बस में है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनका परिभव, परिभव बोलते तिरस्कार, अनादर। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को रामायण में लिखा है, साधु अवज्ञा करिफल ऐसे, जरई नाथ जरई नगर अनाथ कर जैसे, संत की अवज्ञा करने से नगर अनाथ के समान जो लंका था वह जलने लगा। इसी बात यहाँ लिखा कि महापुरुषों का जिनकी इंद्रियां मन वश में है, जो हमेशा भगवान के भजन में लगे हैं, ऐसे का जो परिभव तिरस्कार है, वो नहीं पथ्य किसी के भी कल्याण को करने वाला नहीं होता है, बड़ा ही अमंगलकारी होता है। पूज्य पूजा व्यतिकरणे मरण त्रासो दुर्भिक्षु जायते, पूज्य के पूजा का
व्यतिकर मतलब तिरस्कार करने से, छोड़ने से, मरण या जो है भूकंप जैसी समस्या खड़ी होती है। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, उस घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार काशी के कुछ पंडित कश्मीर यात्रा के लिए चले। कश्मीर पहुंचने के बाद वहां का राजा बड़ा स्वागत किया। राजा ने पूछा कि आप हमारे यहाँ किस कामना से इच्छा से आए हैं। पंडितों ने कहा कि हम कश्मीर के तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने सारी व्यवस्था कर दिया। काशी के पंडित अच्छी प्रकार से कश्मीर के तीर्थाटन को कर लिए, पधारे। राजा ने पूछा है कोई तकलीफ तो नहीं हुई। काशी के विद्वानों ने कहा कि यात्रा तो हमने सब पूरी कर ली, परंतु हमने सुना है कि आपके देश में बड़े भारी एक पंडित हैं, जिनका नाम कैयट है। कैयट बहुत मशहूर है, व्याकरण दर्शन पर इनका बड़ा अच्छा व्याख्यान है, तो हम कैयट का दर्शन करना चाहते हैं। काशी ने कहा कि हमें तो पता नहीं कोई कैयट यहाँ पर है। काशी के पंडितों ने कहा कि हम लोग उनके ग्रंथ को भी पढ़े हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। राजा ने कहा कि आप ठहरिए, मैं पता लगा करके आपको बताऊंगा। पंडितों की व्यवस्था कर दिया, मंत्री को भेजा कि पता लगाओ कैयट कहाँ रहते हैं। कई दिन ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि एक नदी के किनारे अपना झोपड़ी बना करके और कैयट पठन पाठन में लगे हुए हैं। राजा पंडितों की व्यवस्था कर दिया। पंडित कैयट के पास जाते हैं, जाकर के उनसे अच्छी वार्तालाप होती है। वार्तालाप में सारे शंका का समाधान करते हैं। काशी के पंडित बहुत खुश हुए, एक तो हमारी यात्रा पूरी हुई, दूसरी शंकाओं का समाधान हो गया, जितनी शंकाएं थी। चलते समय उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जिस देश में इतना बड़ा भारी पंडित हो, विद्वान हो, उसके न रहने की ठीक से व्यवस्था है, न खाने की, न कोई मकान है, झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, जैसे तैसे कुल्थी के अनाज को बना के खाता है। उनके मन में संशय हुआ कि लगता है कि राजा यहाँ का विद्वत प्रिय नहीं है। राजा के पास काशी के पंडित आए। राजा ने पूछा कि आपने उनका दर्शन किया। तो पंडितों ने कहा दर्शन भी किया, शंका समाधान भी हुआ, परंतु राजन अब आपका यह राज्य बहुत दिन तक ठहर नहीं सकता है। राजा ने कहा ऐसी क्या कमी आपको दिखाई पड़ी। काशी के पंडितों ने कहा कि जिस राज्य में विद्वान का, संत का तिरस्कार हो, वह राज्य लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके राज्य में इतने बड़े भारी पंडित हैं, आप उनका नाम भी नहीं जानते, उनकी व्यवस्था भी ठीक से नहीं, ये बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। राजा ने कहा कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, तत्काल मैं उनकी सारी व्यवस्था कर देता हूं। राजा अपने मंत्री को वहां भेजता है। मंत्री जाकर कैयट के पास निवेदन करते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप जो है बताइए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। कैयट ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, मैं अपरिग्रही ब्राह्मण हूं, मैं परिग्रह नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण को परिग्रह करना निषेध है, जरूरत से ज्यादा चीज ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मंत्री वापस आ गए। राजा ने सोचा कि मुझे खुद चलना चाहिए। राजा खुद जो है दूसरे दिन कैयट के पास जाते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं और राजा ने कहा कि आपको कोई अनुपत्ति हो तो आप मुझे बतलाइए। कैयट ने कहा मुझे तो कुछ भी अनुपत्ति नहीं,
क्योंकि मैंने बड़ा सोच विचार करके ग्रंथों का व्याख्यान लिखा है, मुझे तो कोई अनुपत्ति है नहीं। हाँ, तुझे कोई अनुपत्ति है तो तू बता, मैं समाधान करूंगा। राजा ने कहा कि मैं तो कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, अनुपत्ति का तात्पर्य है कि जो आपके पास चीज न हो, कमी हो, उसको आप बता।